सुप्रभातम। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026 सुबह के 5:52 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। खेत खलियान कार्यक्रम में लीजिए सुनिए वार्ता। विषय है बरसाती भिंडी की खेती। जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
1: नमस्कार। खरीफ मौसम के लिए भिंडी लगाने का समय अभी चल रहा है। इसे बरसाती भिंडी के नाम से भी आप जानते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं वैशाली,

0: बधु, पूसा सावनी, हरी चिकनी, पॉर्किंस, लॉन्ग ग्रीन लोकल, सेल वन, पूसा मखमली। बरसाती भिंडी की बुआई किसान भाई जून जुलाई में कर सकते हैं। इस समय बुआई करने से लाभ जो है अच्छा मिलता है। खेत की तैयारी करते समय आप ये ध्यान रखें कि मिट्टी पलटने वाले हल से खेत की जुताई एक बार कर लें, उसके बाद से दो तीन जुताइयां देसी हल से करें ताकि मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालें। और उस समय एक और बात का ध्यान रखें कि नीम की खल्ली का प्रयोग खेत में जरूर करें या करंज की खल्ली का प्रयोग करें ताकि आपके खेत में भूमिगत कीड़े जो हैं वो नुकसान नहीं कर सके। बरसात के मौसम में जब आप भिंडी की खेती करते हैं तो उसमें 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है तो सड़ी हुई गोबर की खाद 30 टन, नेत्रजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में दें। बोने के समय नेत्रजन 60 किलोग्राम और 40 से 45 दिनों बाद 60 किलोग्राम नेत्रजन का व्यवहार करें। स्फुर 70 किलोग्राम और पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में बोने के समय आप खेत में दे दें। इस मौसम में सिंचाई करने की आवश्यकता विशेष नहीं होती है भिंडी की फसल को, लेकिन प्रारंभिक दिनों में आप जब मौसम गर्म रहे और वर्षा नहीं हो उस समय एक या दो सिंचाई जो है आप करें। भिंडी की खेती में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पौधे को रोग और कीड़ों से कैसे आप बचाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीला मोजाइक रोग के बारे में, जो कि भिंडी में बहुत होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों के ऊपर, तनों के ऊपर और कभी कभी संपूर्ण पौधे पर चित्तियां पड़ जाती हैं, जो कि पीले रंग की होती है, अनियमित आकार की होती है, ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से घरों में मोजैक किया जाता है, इसीलिए इसका नाम मोजैक रोग है। यह रोग वायरस के द्वारा फैलता है, इसलिए इस रोग को रोकने के लिए अभी तक कोई विशेष दवा नहीं बनी है। केवल इस रोग को फैलाने वाले जो कीड़े होते हैं उनको यदि आप नियंत्रित कर लें तो ये रोग जो है नहीं होता है। इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कीड़े प्रसारित करते हैं, यानी कि जो रोगजनक वायरस होते हैं उन्हें कीड़े अपने साथ लाते हैं रोगी पौधे से निरोग पौधे पर। तो उन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ पौधों के ऊपर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव जो है आपको करना होता है। खेत में यदि इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो पहले ही पौधे को उखाड़ कर फेंक दें और बाकी स्वस्थ पौधों पर इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव करें ताकि कीड़े नहीं आएं और आपकी फसल जो है वो बची रहे। बरसात के मौसम में कीड़े के द्वारा ये फल छेदक कीड़ा और तना छेदक कीड़े के द्वारा नुकसान भिंडी की फसल को किया जाता है। इसमें फलों के अंदर छेद पाए जाते हैं, तनों के अंदर भी छेद पाए जाते हैं, फलों के ऊपर काला पदार्थ भी जमा रहता है जो कि कीड़े का बिष्ठा होता है। तो इस तरह से फल की गुणवत्ता खराब होती है और बाजार में इसका मूल्य नहीं मिलता है। इस कीड़े को नियंत्रित करने के लिए आप इंडोसल्फान 35 ईसी दवा का छिड़काव ऊपर से कर सकते हैं या दानेदार दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दानेदार दवा का जब आप प्रयोग करें तो काफ़ी सावधानी के साथ दवा प्रयोग करने के एक महीने के बाद ही फलों की तुड़ाई करें। और दवा प्रयोग करने के पहले आप फलों की तुड़ाई कर लें क्योंकि ये दवा काफ़ी जहरीली है, जैसे दानेदार दवा फ्यूराडान है या 410G है, तो इसके प्रयोग के पहले काफ़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। खेत में खरपतवार नहीं हो इसकी भी व्यवस्था आप करें और समय समय पर देखभाल करते रहें तो भिंडी की फसल से उत्पादन अच्छा होगा।
1: बरसाती भिंडी की खेती खेत खलिहान में, अभी किसान भाई ये वार्ता सुन रहे थे, जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

0: किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए आज का चिंतन मनन।
3: मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल का पहला महीना है। मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को यौम आशूरा भी कहा जाता है। यह दिन इस्लाम धर्म में बहुत ऐतिहासिक है। अगरचे मुहर्रम का पूरा महीना पवित्र और श्रद्धा वाला है, परंतु जो अहमियत मुहर्रम की दसवीं तिथि की है वो किसी और दिन की नहीं। इस्लाम धर्म के अनुसार मुहर्रम की दसवीं तिथि को जमीन और आसमान, चांद और सूरज, स्वर्ग नर्क को बनाया गया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए, जिन्हें मानव जाति के जनक के रूप में प्रथम मनुष्य कहा जाता है। मुहर्रम की दसवीं तिथि को बहुत से पैगंबरों को इनामात और करामात से ईश्वर ने नवाजा, और इस्लाम धर्म के अनुसार कयामत भी मुहर्रम की दसवीं तिथि को शुक्रवार के दिन ही आएगी। इन सारी बातों के अलावा मुहर्रम की दसवीं तिथि यानी यौम आशूरा का दिन खास महत्व रखता है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने करबला में शहीद कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लामी कानून और राजकीय व्यवस्था धर्म गुरुओं को दी गई, जिन्हें खलीफा कहा गया। इस्लामी खलीफा ना तो सत्ता के लोभी थे और ना ही अपने फायदे या लाभ के लिए कोई काम करते थे। वे अपने शासन काल में न्याय और सत्य को स्थापित कर उसे लागू करते। बड़े हो या छोटे, बलवान हो या शक्तिहीन, उनके साथ एक सा न्याय हो तथा वे अपनी प्रजा की सुख शांति में हमेशा तत्पर रहते थे। परंतु 61 हिजरी के आसपास सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। यजीद एक भ्रष्ट, जालिम तानाशाह और अन्याय करने वाला व्यक्ति था। अधिकतर लोगों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ लोग जो न्याय और सत्य के प्रेमी थे, उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिनका समाज में उच्च स्थान था। उन्हीं में एक ऐसी शख्सियत थी जिनका नाम हजरत इमाम हुसैन था। यजीद को यह डर था कि इमाम हुसैन के अस्वीकार के कारण अधिकतर लोग कहीं यजीद का साथ ना छोड़ दें। ऐसे में यजीद ने अपनी खिलाफत मनवाने के लिए इमाम हुसैन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ताकि वो किसी तरह उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन को कब यह गवारा होता कि वो भ्रष्ट, जालिम और अन्याय पसंद का साथ दें। इसी बीच कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को पत्र लिखा कि आप कूफा आए। हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार के चंद अहबाब के साथ कूफा के लिए चल पड़े। इस बात की जानकारी जब यजीद को हुई तो यजीद ने अपनी फौज को भेजकर उन लोगों को रास्ते में ही घेर लिया। यह इलाका करबला का था और जंग के लिए तैयार हो गए। फलस्वरूप इमाम हुसैन के खेमे के लोग एक के बाद दीगरे शहीद होते चले गए, और दसवीं मुहर्रम यानी आशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। उनके खेमों में आग लगा दी गई और औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। करबला की घटना पूरी दुनिया को रोने पर मजबूर करती है और इस बात को याद दिलाती है कि अन्याय और असत्य कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, हमें उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और अपने जानोमाल की कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटना चाहिए, वरना यह संसार अन्याय, असत्य और हिंसा से भर जाएगा और हमें इमाम हुसैन की बातों पर चलना चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा कि इज्जत के साथ मरना जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। अकल उस वक्त तक कामिल यानी पूरा नहीं जब तक हक की पैरवी ना की जाए, यानी अकल को सही रास्ते पे चलने के लिए इस्तेमाल करें। सच के रास्ते पर रहो, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। बेहतरीन शासक या राजा वो है जो जुल्म को मिटाए और इंसाफ को जिंदा करे।
2: ये था आज का चिंतन मनन। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। वंदना में निवेदित हैं कुछ भक्ति रचनाएं।

किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ। मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं पिता विवेक सुमितिर जनित्री स्वसापि हिंसा दयिता दैव धर्म सहाय करुणा कुमारी सुनुस्थता दीन जनोपकार। चाणक्य नीति शास्त्र का ये कथन है, अर्थात इस संसार में मनुष्य का विवेक उसका पिता है, सुबुद्धि उसकी माता है, अहिंसा उसकी बहन है, दया उसकी पत्नी है, धर्म उसका साथी है और करुणा उसकी पुत्री है तथा दुखियों का उपकार करने की भावना उसके पुत्र के समान है। जी हाँ साथियों, कहते हैं आचरण की उत्कृष्टता ही हमें श्रेष्ठ बनाता है और धर्म परायण बनाता है। सच्चे अर्थों में जो धर्म परायण होते हैं वो अपने कर्मों में भी श्रेष्ठता रखते हैं। जिन कर्मों को समाज ने प्रशंसनीय माना है उस पर चलना ही धर्म का पालन करने के समान है। सभी प्राणियों से प्रेम करना ही वस्तुतः प्रभु से प्रेम करना है।

ईश्वर के बनाए इस संसार रूपी रंगमंच पर हम अपने अपने हिस्से का अभिनय ही तो कर रहे हैं दोस्तों। जीवन भर पाप कर्मों में लिप्त रहकर दूसरों को कष्ट पहुंचाकर अगर हम उन्नति के शिखर पर भी चढ़ते हैं तो इसमें हमने कितनों की आह ली, कितनों के आंसू गिराए, ये बातें कहीं ना कहीं हमें भी आंतरिक कष्ट देते ही हैं। अतः हमें अपने जीवन में आने वाले समस्त जीवों से प्रेम करना चाहिए, उन पर दया दृष्टि रखनी चाहिए, न कि येन केन प्रकारेण हम अपनी उन्नति करें। सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाता है और हम जिस तरह आए हैं उसी तरह रुखसत होते हैं इस संसार से। न जाने कब कहाँ किस रूप में हमें ईश्वर का दर्शन हो जाए, इसलिए हमें सब में ईश्वर का रूप मानकर सब प्राणियों से प्रेम करना चाहिए और तभी हमें सच्चे अर्थों में ईश्वर का दर्शन होगा और ईश्वर से हमारा मिलन होगा।

साथियों, ईश्वर प्रेम की भाषा समझते हैं। कहीं सबरी के जूठे बेर खाकर वो धन्य होते हैं, तो कहीं सुदामा के लाए मुट्ठी भर चावल खाकर प्रभु धन्य होते हैं। जब ईश्वर ही जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें शाश्वत प्रेम की सीख देते हैं, फिर हम इंसानों ने अपनी आत्मा को क्यों मलिन किया है, इन बेड़ियों में क्यों कैद कर रखा है, और सिर्फ इन कारणों से ही हम अपनी आत्मा को मलिन क्यों कर रहे हैं, हम अपने मन को व्यापक क्यों नहीं बनाते। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने मन के दर्पण को खोलेंगे, अपने हृदय में विशालता लाएंगे, तो हर ओर हमें ईश्वर की सत्ता का आभास होगा और हम लोगों का परोपकार कर पाएंगे, दूसरे में भी अपने आप को देख पाएंगे। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। वंदना में आज आपने जिन कलाकारों को सुना वे थे जगजीत सिंह, सुचित्रा वर्वे और साथ ही हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर प्रिया से ली गई भेंट वार्ता। विषय है महिलाओं में कमर दर्द। आपसे बात कर रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
1: डॉक्टर प्रिया, महिलाएं अक्सर शिकायत करती हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो ये कमर का दर्द क्या है और कब कब होता है महिलाओं में और किस तरह से ये होता है?
2: देखिए, महिलाओं में कमर दर्द जो है वो दो कारणों का समीकरण है। एक है असंतुलित आहार जिसके कारण आपकी हड्डी और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और दूसरा काम करने की प्रणाली, यानी हम किस तरह से खड़े होकर बैठकर अपने कार्य को कर रहे हैं और हमारी कमर पर उस चलते कितना जोर पड़ रहा है।
1: जी, और ये कब कब होता है ज़्यादा?
2: ज़्यादातर आप देखेंगे महिलाओं में जब वो गर्भावस्था के दौरान हो या गर्भावस्था के उपरांत, गर्भावस्था के पहले महीने के समय, ये सब कॉमन चीज़ें आमतौर पे देखी जाती है। ये सब समय है जब महिलाओं में कमर दर्द ज़्यादा होता है।
1: ये कमर दर्द जो है वो किस किस कारण से हो सकता है?
2: देखिए, पहला कारण मैंने जो कहा आहार, हमारे आहार में प्रोटीन और कैल्शियम दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मौजूद हों तो वो हमारी हड्डी और मांसपेशियों में मजबूती देती हैं। अगर महिला के आहार में ये दोनों चीज़ों का सेवन नहीं है तो डेफिनेटली उनकी हड्डी और मांसपेशी कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे वो अपने शरीर का लोड ना ले पा रही हो और वो दर्द में परिवर्तित हो जाती है।
1: जी, और आज का जो ये है स्टाइल है, लाइफ स्टाइल आदमी का, खास करके जो चप्पल और जूती जो महिलाएं पहनती हैं, हाई हील होता है, उसके कारण भी क्या कमर में दर्द हो सकता है?
2: जी हाँ, आजकल जो हम लोगों का जो हम कहते हैं फैशन स्टेटमेंट अंग्रेजी में, यानी फिल्मों को देखकर उस तरह की स्टाइल को कॉपी करना और हम हाई बड़ी बड़ी हील वाले चप्पल पहन लेते हैं और कई किलोमीटर तक पैदल चल देते हैं, क्योंकि गांव में तो अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कोई भी शादी विवाह हुआ तो बारात में चली गई, लंबी चप्पल हील वाली पहन ली क्योंकि वहाँ उन्हें दिखाना है। लेकिन उससे क्या होता है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी का जो ढांचा है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण कमर पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो कमर दर्द में परिवर्तित हो जाता है।
1: जी, तो ये कमर दर्द जो है वो जब हो जाए आदमी को या इसकी शिकायत हो प्रारंभिक अवस्था में, वो क्या करे, किस तरह से इसका इलाज करवाए ताकि जो है कमर दर्द से मुक्ति मिले?
2: देखिए, सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि किसी भी महिला को कमर दर्द क्यों हुआ।
1: जी,
2: यदि आप कारण को जान जा रहे हैं तो 50% आपकी बीमारी ऐसे ही ठीक हो जा रही है।
1: जी,
2: दूसरी चीज आहार पर ध्यान दें। तीसरी चीज कि आप किसी भी विशेषज्ञ के पास जाकर एक बार जांच लें कि कमर दर्द क्यों हो रहा है। और इसमें मैं तो ये कहूँगी कि दवा जो पेन किलर होते हैं या दर्द की जो दवा होती है उसको खाने से बेहतर है कि किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं जो आपको सही व्यायाम सिखा सके, जिसके द्वारा आपके मांसपेशी में दोबारा ताकत दिलवाई जा सके। और आप अगर आहार सही कर रहे हैं तो आपकी हड्डियों में भी ताकत वापस आ रही है और आप इसी तरह से बिना दवा खाए अपने कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं।
1: उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है, जीने का जो तरीका है, आपने कहा कि हाई हील वाली जो चप्पल जूती है, इन सब का जो है प्रयोग कम से कम करें।
2: जी, इसके अलावा मैं और भी दो तीन बातें कहना चाहूँगी, जैसे कि जो घर में हम ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनमें बदलाव किया जाए तो भी हम अपने शरीर को कमर दर्द से बचा सकते हैं।
1: यानी कि छोटी छोटी बातों पर यदि आप ध्यान दें तो कमर दर्द से अपने को बचा सकती हैं, और ये महिलाएं भी करें और पुरुष भी यदि इस पर ध्यान दें तो उनका भी यदि इस तरह का कोई कंप्लेन है तो दूर हो जाएगा। डॉक्टर प्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसमें आज आपने सुना महिलाओं में कमर दर्द, इस पर ली गई भेंट वार्ता का अर्थ थी डॉक्टर प्रिया, और आपसे बात कर रहे थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के अंतिम चरण में राम कथा का वो प्रसंग आता है जहां श्री राम और लक्ष्मण पंपा नामक सुंदर सरोवर के तीर पर पहुंचते हैं। गहरे सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं जिन पर मधुर स्वर में भौरे गुंजार कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुलों तथा जल निवासी पक्षियों का समूह देखते ही बनता है। इसी सरोवर के आसपास मुनियों के आश्रम हैं, जहां अनेक प्रकार के वृक्षों तथा लताओं ने अद्भुत सुषमा बिखेर रखी है। श्री राम तथा लक्ष्मण ने सरोवर के शीतल जल में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में दोनों भाई बैठ गए। वहां देवता तथा मुनियों ने उनकी स्तुति की। सीता हरण के कारण श्री राम के हृदय में विरह वेदना व्याप्त है, ऐसा सोचकर महर्षि नारद के मन में ये विचार उठा कि उन्हीं के शाप को स्वीकार करके श्री राम अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं। इसी विचार में मग्न नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए प्रभु के सम्मुख उपस्थित हुए।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान की अगली कड़ी। संगीत रचनाकार थे सतीश भाटिया, गायक कलाकार थे रंजना जोगलेकर और श्रीकांत परगांवकर। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।

सुगम संगीत के चंक में आज के कलाकार होंगे भोले शंकर झा। 9:30 पर सुगम संगीत के आज के कलाकार होंगे चेतन कुमार चौबे। और सुरलहरी में संध्या 7:52 पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर अजय राय के गाए कुछ गीत और भजन। प्रातः 10:30 पर लोकगीत के आज की कलाकार होंगी सांत्वना साह। दिन के 1:00 और 1:20 पर लोकरंग में आज आप सुनेंगे किरण पाठक के गाए कुछ लोकगीत। दिन के 12:00 बहनें अपना कार्यक्रम सुनेंगी नारी लोक। 1:30 पर ग्रामीण श्रोता बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा घर आंगन। संध्या 5:00 युवा साथी अपना प्रिय कार्यक्रम सुनेंगे ये वो वाणी। शाम 6:00 ग्राम जगत खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाता है। दिन के 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम पेश होगा उमंग। शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार की वार्ता तंबाकू सेवन में के दुष्प्रभाव। रात्रि 9:30 पर रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प का समन्वित अंक प्रसारित किया जाएगा। इसे हम अपने पटना केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन प्रसारित किया जाएगा। जी साथियों, और फिल्मी गाने आज हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ इस तरह। प्रातः 7:30 पर शाम 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 9:10 पर पेश खदमत होगा नगमे नए पुराने। प्रातः 10:00 पुरानी फिल्मों के गानों का लुत्फ आप उठाएंगे। कार्यक्रम होगा पुरानी फिल्मों से नए तरानों का आनंद लीजिए नई फिल्मों से। कार्यक्रम में प्रातः 11:00 पर विशेष फिल्मी गानों का गुलदस्ता सजेगा। दिन के 2:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रपट से। रात्रि 8:00 अपनी खुशबू लेकर आएगी रजनीगंधा। और रात्रि 10:30 पर आप ही की फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम होगा पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से। समाचार की प्रतीक्षा कीजिए इस वाद्य संगीत के साथ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भागलपुर को मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेश है मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इस इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त संगीता। दोस्तों, कभी कहते थे बांध लो मन को इस बंधन

में फर्ज नहीं दस्तूर है ये, कौन मिटा सकता है इसको, रंग नहीं सिंदूर है ये। लेकिन आज का दौर ये है कि आज हम देख रहे हैं कि अपने पति या होने वाले पति की ही हत्या करवा करके इस सिंदूर को मिटा दे रही हैं लड़कियां। क्यों हो रहा है हमारे समाज में अक्सर पति या पत्नी की हत्या का ये भाव कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये बंधन ऐसा हो गया है जिसमें अब प्रेम विश्वास का अभाव होते चला जा रहा है और लोग इससे इतर खुशियाँ ढूंढते हैं। बेशक खुशियाँ ढूंढें, लेकिन किसी की हत्या करना तो एक जघन्य अपराध है और जिसकी कोई माफ़ी, कोई इसका कोई उपाय ही नहीं है कि ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो दोस्तों, सोचना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों ऐसा अक्सर हम देख रहे हैं रोज़ बरोज ऐसी घटनाएँ, जबकि लोग जानते हैं कि आज साइबर दुनिया है, डिजिटल दुनिया है, लोग क्राइम करके बच नहीं सकते हैं, फिर भी इतना दुस्साहस लोग कर रहे हैं और किसी के पाले पोसे बच्चे को ले जाकर कहीं मार दे रहे हैं। क्यों है ऐसा? इसमें हमें जहाँ तक लगता है उस माँ बाप का दोष है जो अपने बच्चों की शादियाँ फिक्स करने से पहले अपने बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये नहीं टटोलते। उन्हें बार बार ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चे को अपने जीवन साथी के साथ जीवन गुजारना है, ना कि आपके रसूख के साथ, आपके रुतबे के साथ, आपके पैसे के साथ। उसको जो जीवन साथी पसंद आएगा उसी के साथ अब राहे ज़िंदगी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्यों उसको के ऊपर बंधन डालते हैं, दबाव डालते हैं? 21-22 साल की उम्र की लड़की सिया जिसने ऐसा कांड किया, उसकी उम्र उतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन उसके परिजनों का तो सब कुछ ठीक ठाक था। वो टटोलते अपनी बच्ची के मन के भाव को कि उसका मन कहाँ टिका बैठा है। अगर वो सही अर्थों में उसके मन को टटोलते तो आज दो परिवार बिखरने से बच जाता। ऐसा नहीं है कि जिसका बच्चा गया वही सिर्फ सदमे में है, जिसके बच्चे ने ऐसा काम किया वो दोनों परिवार भी आज सदमे में हैं, दुख में हैं, और कहीं ना कहीं वो परिवार सदा के लिए बिखर गया जिसका बच्चा जेल में है, और कम से कम आजीवन कारावास तो उन्हें होगी ही, वो परिवार भी तो बिखर गया। इसलिए सोचना चाहिए और जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया उसे भी साहस दिखाना चाहिए। इतना बड़ा अपराध करने से पहले वो अगर थोड़ा सा साहस दिखा करके अपने मन की बात अपने परिजनों तक रखते, ना रखते परिजनों तक जिससे उसका संबंध होने जा रहा था, वहाँ तक भी अगर वो अपनी बात पहुँचा देती तो शायद ऐसी घटना ना घटती। किसी का पाला पोसा बच्चा नहीं जाता इस संसार से। इन बातों को देखना चाहिए हमें समाज में सीख के तौर पर। हर घर में बच्चे हैं और ऐसा कहीं नहीं हो, इसका हमें ही उपाय ढूंढना होगा। परिवार को, समाज को ये देखना होगा, परखना होगा कि जाति धर्म ये सब और आपका रसूख रुतबा पैसा सब कुछ पीछे है, पहले है मन का बंधन। अगर आपका बच्चा कहीं किसी से जुड़ा हुआ है तो आप आगे बढ़ कर के समाज में ये आदर्श प्रस्तुत करें कि वो जहाँ जिससे अपने जीवन का रास्ता जिसके साथ तय करना चाहते हैं उनके साथ उन्हें जाने दें और ससम्मान उनको बंधन में बांधें। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मन टूटा हुआ है, मन बिखरा हुआ है, इन बातों से हर परिवार दहशत में है। आज ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष में, किसी जात विशेष में ऐसा हो रहा है। आज ये नासूर हर एक घर, हर एक परिवार, हर एक समाज की समस्या बन गई है। इन बातों पर सोचना और विचार करना अत्यंत महनीय है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और आनंद लेते हैं हम सुगम संगीत का। आज के कलाकार हैं भोले शंकर झा।

गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के तहत आप सुन रहे हैं भोले शंकर झा के गाए गीत और भजन। साथियों, आपने सुना तुलसीदास का ये भजन, और अगला भजन है मलुक दास का।

0: जी साथियों, अब वक्त हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, और इस अंतराल के बाद दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, हम और आप देखेंगे न्यूज़ हेडलाइंस, आज न्यूज़पेपर में क्या है ख़ास ख़ास हम सबों के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
2: Nexa.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर

0: दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: 870-001-4242।
2: दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं आज मुहर्रम है, तो मुहर्रम के अवसर पर कल हमारे मुस्लिम भाइयों ने निशान जुलूस निकाला, युवाओं ने करतब दिखाए। आज निकलेगा ताजिया जुलूस, देर रात पहलगाम के बाद त्यौहार का होगा समापन। परीक्षा विभाग में फिर दलाल सक्रिय, जांच शुरू होते ही भागे। DRCC PM अजय मेले में 227 का ऑन द स्पॉट चयन, 270 अभ्यर्थियों ने लिया कौशल प्रशिक्षण का संकल्प। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत गुरुवार को बरारी स्थित DRCC सभागार में कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। बीटेक में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। UGEC 2026 के तहत ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग आज से शुरू होगी। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सत्र 2026-27 के बीटेक नामांकन को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा आयोजित UGC-AC 2026 काउंसलिंग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को का नामांकन किया जाएगा। नीट UG प्रोविजनल आंसर की सीट जारी कर दी गई है। 28 तक लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। साथियों, DBA यानी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है, क्योंकि 90% वकील लॉ कॉलेज के छात्र संस्थान की खासता हाल का चुनावी मुद्दा नहीं बनाते हैं, इसीलिए कुछ लोगों में आक्रोश है और बाकी इलेक्शन का मुद्दा अभी चरम पर है। लोग कल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, विभिन्न पदों पर के लिए लोगों ने अपना नामांकन पत्र भरा। लोहापट्टी दवापट्टी सहित 33 जगहों पर बनेगी सड़कें व नाले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया संविधान हत्या दिवस। JP सेनानियों को मंत्री डॉक्टर प्रमोद ने किया सम्मानित। वित्तीय पारदर्शिता के लिए बहाल होगी एजेंसी। राजद के जिला कार्यकारिणी की आज बैठक होगी। री नीट धांधली सुरक्षा वेंडर्स के स्लीपर सेल बनने से लगी सेंध। विधायक ने ली बीमा योजनाओं की जानकारी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भागलपुर शाखा कार्यालय में गुरुवार को स्थानीय मान्य विधायक रोहित पांडे पहुंचे और उन्होंने ये जानकारी ली। सफाली युवा क्लब आज निकालेगी रैली। OPD बंद, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। और साथियों, आज का इम्पोर्टेंट न्यूज ये भी है कि कांवरिया पथ पर लगेंगे 13 स्वास्थ्य शिविर। श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज समेत भागलपुर जिले में पड़ने वाले पूरे कांवरिया पथ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है और कुल 13 अस्थायी स्वास्थ्य शिविरों का संचालन प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, समय का अभाव है, इसलिए बहुत सारे न्यूज़ तो हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन मेन न्यूज़ जो भागलपुर और आसपास से संबंधित है उसे हमने आप तक पहुंचाया। और अब समय हो चला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और चिंतन पर आधारित हमारे साप्ताहिक चंक गांधी कथा का। तो लीजिए सुनिए गांधी कथा। गांधी कथा के इस चंक में आज डॉक्टर विजय कुमार की वार्ता आपके लिए है। विषय है गांधी और सरकारी तंत्र।

0: भलीभांति परिचित हैं। बदलते वक्त के साथ इस शब्द के मायने भी बदले हैं। आइए आज की गांधी कथा में हम ये जानते हैं कि महात्मा गांधी इस संबंध में अपनी क्या राय रखते थे। आज की वार्ता का विषय है गांधी और सरकारी तंत्र। वार्ताकार हैं डॉक्टर विजय कुमार।
1: 20वीं सदी के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विद्वान प्रोफेसर माइकल जोसेफ ऑक्शॉट, जो हेरोल्ड लास्की और ग्राहम वालास जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों के उत्तराधिकारी थे, ने कहा था कि राजनीतिक गतिविधि का ध्येय राज्य की नाव को गतिमान रखना है, धन संपदा या समृद्धि बढ़ाना नहीं है। वह मानते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों में मनुष्य एक अतल असीम समुद्र में तैरता है, जिसका न कोई प्रस्थान बिंदु है और न निश्चित गंतव्य। राजनीति की इस स्थिति को समझते हुए गांधी एक अच्छे नाविक की कला का प्रमाण देते हुए सत्य और अहिंसा के अटल सिद्धांतों का सहारा लेकर एक ऐसी राजनीति को जन्म देना चाहते हैं जो व्यक्ति की अंतर्निहित अच्छाई, नीति नैतिकता और तार्किक सिद्धांत पर आधारित हो, न कि पूर्वाग्रह, अंधविश्वास और शारीरिक बल पर। गांधी मानव जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार मानव मन या मानव समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक खंडों में अलग अलग और स्वतंत्र कक्षों में नहीं बटा है। ये सभी आपसी अंतरक्रियाओं में संलग्न हैं और उनके बीच विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। इस तरह हम जो भी कार्य किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो हम राजनीति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। गांधी कहते हैं कि आज राजनीति ने सर्प की कुंडली की भांति हमें जकड़ लिया है और व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे इससे मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस सर्प के साथ संघर्ष करना चाहता हूं। इसी क्रम में गांधी ने सत्य एवं अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों से वर्तमान राज्य और राजनीति, यहाँ तक कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, सर्वोदय और राम राज्य की कल्पना करते हैं। गांधी राजनीति के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के हितों को सुरक्षित करना चाहते हैं, एक शांति और न्याय युक्त समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। गांधी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब लोगों को यह अनुभव हो कि यह देश उनका है और इसके निर्माण में उनकी कारगर भूमिका है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों का न कोई उच्च वर्ग होगा और न निम्न वर्ग। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्ण मैत्री भाव से एक साथ रहेंगे। ऐसे भारत में छुआछूत का अभिशाप अथवा मादक द्रव्यों या नशीली दवाइयों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। हमारा बाकी दुनिया के साथ शांतिपूर्ण संबंध होगा। न हम किसी का शोषण करेंगे और न किसी को अपना शोषण करने देंगे। हमें कम से कम फौज रखने की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या यह आज की राज्य व्यवस्था और सरकारी तंत्र में संभव है? गांधी तो राज्य और सरकारी तंत्र की संकल्पना को ही नकार देते हैं। उनकी दृष्टि में राज्य की संस्था न तो स्वाभाविक है और न ही आवश्यक। वह दार्शनिक अराजकतावादियों की तरह राज्य को तीन आधारों पर अस्वीकार करते हैं। प्रथम, राज्य का मूल हिंसा में निहित है। यह हिंसा का विशुद्ध और संगठित रूप है। राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसे हिंसा से दूर रखना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि इसका मूल ही हिंसा है। नंबर दो, एक अहिंसक समाज में राज्य की आवश्यकता ही नहीं होगी। नंबर तीन, राज्य को मिला हुआ अधिकार व्यापक है और वह मनुष्य के व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि राज्य साध्य नहीं, गोल और उद्देश्य नहीं, बल्कि एक साधन है, मीन्स है, माध्यम है, जिससे लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास कर सकें।
0: गांधी कथा में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं गांधी का ये प्रिय भजन।

जनतांत्रिक पद्धति में भी, जो सभी प्रचलित शासन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी है, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक सत्ता का उपभोग करते हुए राष्ट्रीय जीवन का नियमन किया जाता है। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना उन्नत हो जाए कि हर व्यक्ति आत्मनियंत्रित हो जाए तो किसी भी प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। राज्य को संगठित हिंसा का प्रतिनिधि रूप मानने के कारण वे राज्य को अपने आदर्श अहिंसक समाज में कोई स्थान प्रदान नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे अराजकतावादियों की तरह उसके उन्मूलन के पक्षधर हैं। उनका आदर्श समाज राज्यविहीन है, उसमें वर्ग विहीनता भी है। राज्य गांधी की दृष्टि में तत्काल परिस्थितियों में एक आवश्यक बुराई है। वह हेनरी डेविड थोरो की इस मान्यता से सहमत थे कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है, दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। इसका अर्थ है कि जब जब राजनीतिक शक्ति पर जनता का अधिकार होता है, तब तब जनता की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। दूसरे शब्दों में, जो राष्ट्रीय समाज राज्य के अधिक हस्तक्षेप के बिना अपना कामकाज सरलता और सफलता के साथ चला सकता है, वही वस्तुतः लोकतांत्रिक है। जहां ऐसी स्थिति नहीं है, वहां शासन का स्वरूप केवल नाम मात्र का लोकतंत्र है। गांधी का स्वराज आत्मशासन और आत्मसंयम है। हम अपने ऊपर राज करें, वही स्वराज है। गांधी कहते हैं कि सच्चा स्वराज लोक सम्मति से होने वाला शासन है। स्वराज थोड़े लोगों द्वारा सत्ता प्राप्त कर लेने से नहीं, बल्कि जब सत्ता का दुरुपयोग होता हो तब सब लोगों के द्वारा उसका प्रतिकार करने की क्षमता में निहित है। स्वराज का अर्थ है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयत्न, वह नियंत्रण विदेशी हो या स्वदेशी। गांधी के स्वराज में जाति, नस्ल, धर्म, संप्रदाय, लिंग, क्षेत्र, भाषा, राज्य, राष्ट्र के भेदों का कोई स्थान नहीं होगा। उस पर किसी का एकाधिपत्य नहीं होगा, वह सर्वोदय सर्वकल्याणकारी होगा। गांधी के सपनों का स्वराज राम राज होगा। आधुनिक राज्य में सभी आयामों में खामियां हैं। प्रतिनिधि संस्थाएं भी समाज के विभेद और कमजोरियों का फायदा उठाती हैं और जनता को अपनी राजनीति से मूर्ख बनाती हैं, और प्रशासन तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। इस शोषणपूर्ण समाज में रेल, वकील, डॉक्टर भी जन उत्पीड़न से मुक्त नहीं है। जनता को सरकारें और संपूर्ण सरकारी तंत्र तरह तरह से शोषित करते हैं। इस शोषण से मुक्ति का मार्ग सर्वोदय आधारित

0: स्वराज ही है। सरकारी तंत्र को बनाए रखने में कुलीन वर्ग अर्थात वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी और प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना में गांधी ने कहा था, हमें यह स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी राज्य को यहाँ टिकाए रखने वाले ये धनवान लोग ही हैं। आज जब आधुनिक सभ्यता विभिन्न अंतर विरोधों और अवरोधों में फंस गई है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जन सशक्तिकरण और जन सहभागिता पर जोर दे रही हैं तथा सामाजिक आर्थिक विषमता पर चिंता व्यक्त कर रही हैं।
1: सरकार वही सर्वोत्तम है जिसका शासन न्यूनतम हो। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक चरित्र का आज हनन हो रहा है और जो कोई एक बार जीत जाते हैं उन्हें लगता है जैसे हम सारी जनता के मालिक बन बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जनता की के आप सेवक हैं, आप जनता का वोट लेकर के जीते हैं, ना कि आप खुद ब खुद शहंशाह बने हैं। और जब आप जनहित का काम नहीं करते हैं तो फिर जनता के मन में जो आक्रोश फूटता है उसके बाद फिर आपकी सत्ता तिनके की तरह बिखर जाती है। इसलिए जो कोई भी आज राजनीतिक क्षेत्र में आगे हैं उन्हें इस भावना से काम करना चाहिए कि सेवा का ये अवसर उन्हें दोबारा नहीं भी मिल सकता है। दोस्तों, राजनीतिक जीवन हमारे यहाँ ख़ास तौर से भारत में बहुत ही निंदनीय स्तर पर पहुंच गया है। लोग अपने भंडार को भरने में और हर तरह के भ्रष्टाचार को अपनाने में लगे हुए हैं, जिसका पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। हर जगह लोगों को ये दिखना चाहिए कि जिसे हमने जनसेवक चुना वो हमारा काम कर रहे हैं, ना कि ऐसा हो।

जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस किसी भी क्षेत्र में हों, वहाँ हम अपनी ईमानदारी से अपना काम करें, बस देश की स्थिति सुधर जाएगी और देश प्रगति के रास्ते पर चल पड़ेगा, जैसे हम भी अब थोड़ी देर में चल पड़ेंगे रेलवे की सवारी पर। और रेल की सवारी पर हम चलेंगे दोस्तों, लेकिन पहले जान लेते हैं रेलवे की रफ्तार आज कैसी है, ट्रेन की रफ्तार आज कैसी है, छुक छुक करके कैसी कैसी चल रही है। आज हमारे भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की गति क्या है? तो दोस्तों, आपको जानकारी दें कि 1553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस बस अब से थोड़ी ही देर में प्रस्थान करने वाली है। इसका समय है 7:50। ये गाड़ी ऑन टाइम है, 7:45 पर हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 13016। और दोस्तों, अपने सही समय पर आ रही है, हम सबों को अतिशय आनंद देती हुई 12368। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, ये है आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो अपने नियत समय 8:15 पर आने की सूचना है। और दोस्तों, अपने समय से 1.5 घंटे विलंब से आ रही है ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका नंबर है 15658 और इसका टाइम है दोस्तों सुबह 8:05 पर। और अपने राइट टाइम पर आने की सूचना है 8:37 पर जमालपुर साहबगंज पैसेंजर, जिसका नंबर है 15416। और साथ ही अपने सही समय पर यहां से प्रस्थान करने वाली है भागलपुर लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जिसका समय है 8:55 और इसका नंबर है दोस्तों 12335। और वनांचल रांची वनांचल एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों, तो ये अपने नियत समय 9 बजे चलने की सूचना है और इसका नंबर है 13403। और साथ ही साथ साहबगंज जमालपुर मेमू भी अपने राइट टाइम 9:15 पर चलने की सूचना है। और मालदह क्यूल इंटरसिटी, ये गाड़ी भी 9:35 पर यानी अपने सही समय पर आने की सूचना है, इसका नंबर है 13409। और साथियों, भागलपुर से मुख्य दो रेलगाड़ियां जो यहां से प्रस्थान करती हैं, गोड्डा राजेंद्र नगर एक्सप्रेस,

0: ये गाड़ी आज नहीं चलती है दोस्तों, बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका समय है 10:15, इसका नंबर है 13241। ये गाड़ी अपने नियत समय पर चलने की सूचना है और नियत समय पर ही चलने की सूचना है 12367। भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस जो अपने निर्धारित समय 11:55 पर चलने की सूचना है। तो दोस्तों हम सब भी चलते हैं रेल के इस सुहाने सफर पर अपने अपनों के साथ।
1: दिखाए छुप करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूसरे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ तुम।

आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुलपक डंडी टीले पर झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल पटलीपट्टनम दिल्लीपट्टनम दिल्लीपट्टनम पटलीपट्टनम ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोधनूर पोधनूर शोधनूर पोधनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक

जी हाँ साथियों, रेलगाड़ियों का सफ़र सबसे सुखद होता है, क्योंकि जब भूख लगी खाइए और चुपचाप आप आनंद लेते हुए निकलिए और नज़ारों को देखते हुए और बिल्कुल इत्मीनान से समय गुजारते हुए, कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस आप निकलते चलिए आगे। तो दोस्तों, आगे भी बात करेंगे कि आज का इतिहास क्या कहता है। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, हम और आप रहेंगे अब थोड़ी दूर तक और साथ साथ।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: अच्छा दोस्तों, फ्यूचर का प्लानिंग करके तो चलना ही चाहिए और अपने इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर बचाना चाहिए ताकि आपके संकट के समय में और भविष्य में काम आ सके। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को, इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, इसको जारी रखते हुए दोस्तों अब हम जानते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। तो दोस्तों आज 26 जून है, आज 26 जून को नशा मुक्ति दिवस, नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने व इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति नशा का आदि हो जाता है तो वो सबसे दुखद होता है, क्योंकि धीरे धीरे न केवल वो अपने जीवन को समाप्त करते हैं बल्कि पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त और दुखदायी हो जाता है। तो अगर कोई इसके गिरफ्त में आते हैं तो उसके प्रति तुरंत ही समझदारी वाला कदम उठाना चाहिए और इस बुराई से उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। और साथियों आज का दिन और भी कई बातों के लिए जानी जाती है। आज के दिन को हम कई हस्तियों के जन्मदिन के रूप में जानते हैं। दोस्तों आज अभिनेता अर्जुन कपूर का जन्म हुआ था आज ही के दिन, तो जानते हैं आज अभिनेता अर्जुन कपूर के बारे में। ये बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसके बारे में हम दोस्तों आगे बात करेंगे। आज पर्ल एस बक का भी, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिकी लेखिका हैं, इनका जन्म हुआ था। द गुड अर्थ, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आज उन्होंने ही इस बुक को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुन लीजिए, द गुड अर्थ आप जानते ही होंगे, इसे लिखा है पर्ल एस बक ने। 1892 में इस लेखिका का जन्म हुआ और इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और चिली के पूर्व राष्ट्रपति एस ए सल्वाडोर का जन्म हुआ था। और एरियाना ग्रांडे, प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री का जन्म आज ही के दिन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे आज के हमारे बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर के बारे में। अपने बॉलीवुड करियर में कई सफल और लोकप्रिय फिल्मों में आपने काम किया है और जिसमें से मुख्य है इश्क जादे, गुंडे, टू स्टेट्स। चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में उसने क्रिश मल्होत्रा की आपने भूमिका निभाई है। फाइंडिंग फैनी, की एंड का, हाफ गर्लफ्रेंड, मुबारक, पानीपत आदि उनकी प्रमुख फिल्में हैं। तो दोस्तों सिंघम अगेन में भी उन्होंने काम किया है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की के ऊपर फिल्म आया गया ये खूबसूरत सा नगमा। जी साथियों, फिल्म का नाम तो आपने जान ही लिया होगा, फिल्म का नाम है टू स्टेट्स।

जी हाँ दोस्तों, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन और हमारे राष्ट्र का भी सब कुछ सही सलामत रहे और हम यूं ही आनंद के साथ अपने जीवन को गुजारें, इसी कामना के साथ दोस्तों अब आपसे विदा चाहूंगी। सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलते हैं, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला आकाशवाणी का। ये भागलपुर केंद्र है, अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: राजखेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: निकल पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: जी हाँ दोस्तों, जिनके हाथों हमारा देश सुरक्षित है, उन राष्ट्रीय वीरों को, उन सैनिकों को हमारा बार बार प्रणाम। दोस्तों, हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज खबरनामा, और उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना से। तो आइए समाचारों के लिए शामिल होते हैं दिल्ली की प्रसारण सभा में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों के लिए नीट UG की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन

0: और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बढ़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary-General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour.

0: in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. With this win, India have 6 points in Group A from 3 wins and 1 loss. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Anuja. Government lifts Iran war-linked curbs on commercial LPG, writes Hindustan Times. A headline in the Indian Express writes, from Sunday, India will resume tourist visas for Bangladesh nationals. Netra, India's airborne surveillance platform, gets final operational nod, states the Hindu. Sportspersons will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Sarabjit. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की इक़्तिसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक़्तिसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। इससे 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के 2 जहाजों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का एहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे

0: शिरकत करेंगे ताकि मुल्क में मनुष्यात की स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मनुष्यात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया बहरान से पहले थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने एक बयान में कहा है कि बहरान शुरू होने पर बल्क एलपीजी की जो सप्लाई मुअत्तल कर दी गई थी उसमें बहरान से पहले की खपत की सतह की 50% की रियायत की गई है, जिससे कमर्शियल और सनती सारिफीन को काफी राहत मिली है। एलपीजी सप्लाई की सूरत हाल ही में बेहतर होने के तनाजुर में यह कदम उठाया गया है। सरकार ने एलपीजी पूल के लिए C3-C4 स्ट्रीम की मुंतकली को कम करने का भी फैसला किया है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान सरकार ने लाजमी खदमात के एक्ट के तहत अहकाम जारी किए थे, जिसकी रूह से C3-C4 स्ट्रीम को सिर्फ एलपीजी की पैदावार के लिए बरोकार लाने की बात कही गई थी ताकि अंदरून मुल्क एलपीजी की पैदावार में इजाफा हो सके। सरकार ने तेल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत दी है कि वो कमर्शियल और सनती एलपीजी सारिफिन के बारे में जामे डेटा बरकरार रखें ताकि मौसर मनसूबाबंदी और सप्लाई बंदोबस्त में सहूलत हो सके। सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी को वसत देने के अपने अहद को भी दोहराया है। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
0: इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी दोबारा इम्तिहान के लिए अबूरी आंसर कीज को चैलेंज करने के लिए उम्मीदवारों को सहूलत फराहम की है। तलबा इस महीने की 28 तारीख तक ₹200 फी सवाल की फीस अदा करके इन सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कबूल किए जाने की सूरत में ये पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिया केस में सख्त कार्रवाई की है और 8 नामजद मुलजिमों और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ पहली FIR दर्ज की गई है। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर कायम की गई खसूसी जांच टीम SIT की सिफारिश पर यह FIR दर्ज की गई है। ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन की तहरीरी शिकायत पर श्रीराम जन्मभूमि थाने में केस दर्ज किया गया था। मस्कूरा FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ तीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता BNS की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली SIT ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जाम सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरखास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने SIT की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की याद में साल भर चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जाबिराना और मुतलकुल अनान निजाम हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहता और आखिरकार इसका खात्मा हो जाता है।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ अपितु संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सब को एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: 1975 की इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने के सिलसिले में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था ताकि अवाम में जमहूरियत, आईनी अकदार और शहरियों के हकूक के ताल्लुक से बेदारी को तकवीत मिल सके। बैन अलाक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि मगरबी एशिया में हाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। IMF की प्रेस ब्रीफिंग

0: से खिताब करते हुए आईएमएफ के मुआसलात महकमे के डायरेक्टर जूरी कोजेक ने कहा कि गैर मुल्की उथल पुथल के बावजूद भारत की मईशत मुस्तहकम रही है और मजबूत अंदरूनी मुल्क मांग से इसको तकवीत मिली है। आईएमएफ ने कहा कि माली साल 2026-27 में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इस तरह अप्रैल में नजर सानी के बाद शरह तरक्की में इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरकरार रहेगा। मोहतरमा कोजेक ने यह भी कहा कि साल की पहली सहमाही के दौरान भारतीय मईशत की कारकर्दगी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छी रही है। वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों को मलबे में तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां कल 7.2 शिद्दत का सिलसिला आया था। इसके चंद सेकंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का सिलसिला आया। ये दोनों ही जलजले जमीन की सतह के बहुत करीब थे, इसलिए तबाही भी ज्यादा हुई है। कई मुल्कों ने इमदादी कोशिशों में मदद का वादा किया है। वेनेजुएला के सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में कल रात इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 136 रन बनाए। भारत के लिए राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरनी ने 2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में भारत ने जीत का निशाना 16 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे न्यूजर्सी स्टेडियम में ग्रुप ई के एक मुकाबले में एक्वाडोर जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इससे कबल फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया। वो पहली मर्तबा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। टीम के लिए निकोलस पेपे ने 2 गोल किए। निशानेबाजी में जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश 4th पोजीशन पर रहे। योगेश प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई जिनमें सोने के 7, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मर्तबा तमगों के मामलों में सरे फहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले टी20 बैन अलावामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोजा बैन अलावामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले सैकड़ों अफराद हलाक, 1,000 से जायद जख्मी, 10,000 से 1,00,000 के दरमियान अमवात का खदशा, दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इसी खबर से मुतालिक रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, एलपीजी की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमरीका मेगा डील जल्द, दुनिया की नजरें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। यह खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाया किया है कि दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में नई सहूलियात तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं, हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है, आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1000 उम्रा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे, मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में नए रिकॉर्ड कायम।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैनुल अक्वामी माली फंड ने कहा है कि मग़रबी एशिया महाज़राई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तिसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में ख़वातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
4: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
3: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे अशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। यह प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।

0: टीए ने पुनर्परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते के विवरण की पुष्टि और उसे अद्यतन करने के लिए भी एक पोर्टल खोला है। बैंक विवरण इसी महीने की 30 तारीख तक अद्यतन किए जा सकते हैं। नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय जिले के परीक्षा केंद्रों पर हुए फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस टीम का नेतृत्व ईओयू के डीआईजी करेंगे। गौरतलब है कि नीट पुनर्परीक्षा के दौरान लखीसराय में अलग अलग मामलों में 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मद्य निषेध सिपाही बहाली परीक्षा में बेगूसराय और नवादा में फर्जीवाड़े मामले की जांच भी ईओयू करेगी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बाद नाराजगी जाहिर की है। डॉक्टर सिंह के अनुसार विभाग ने कार्रवाई से पहले उनसे किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उन्होंने कहा है कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वे कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सके थे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सिंह को बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और अन्य कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। उनके स्थान पर पीएमसीएच के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य का प्रभार दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदन की विभिन्न समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के भीतर या बाहर स्थल अध्ययन पर जाने वाली सभी समितियों के साथ प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को यात्रा के दौरान प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार करनी होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, जमुई, औरंगाबाद और अरवल जिले के कई प्रखंडों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज सुबह से ही इन स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन स्थानों पर अगले 2 से 3 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने बांका, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया और मुजफ्फरपुर समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, पटना, नालंदा और गया समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में लू की चेतावनी जारी की है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना, गयाजी, जीरादेई, बक्सर, शेखपुरा और वाल्मीकि नगर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए दवाओं पर QR कोड या बार कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि सभी कैंसर रोधी दवाओं, टीके, मादक और मनोरोग

रोगी दवाओं पर QR कोड लगाना अनिवार्य है। यह प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होगी। रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पटना, अहमदाबाद और दानापुर बलसाड़ समेत 5 जोड़ी विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल अब 30 जुलाई तक, बलसाड़ दानापुर स्पेशल 27 जुलाई तक और अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन 1 जुलाई तक चलेगी। इधर रेलवे ने पटना कोटा एक्सप्रेस को जौनपुर सिटी स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर ठहराव दिया है। यह ट्रेन शाम 5:41 पर जौनपुर सिटी स्टेशन पर पहुंचेगी। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों के शहादत की याद में यौमे अशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने अपने संदेश में कहा है कि मुहर्रम के अवसर पर हम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के करबला में दिए गए बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। अरवल समेत विभिन्न जिलों में वरीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। वहीं पटना समेत अन्य जिलों में ताजिया जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से मुंगेर जिले के 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि हादसे में एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है। मृतकों के शवों को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मुंगेर भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। मामले में गोदाम मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत और आयरलैंड के बीच आज से T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला बेलफास्ट में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी इस मैच से अपना डेब्यू कर सकते हैं। ऐसा होने की स्थिति में वैभव टीम इंडिया के लिए खेलने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन जाएंगे। उनकी उम्र अभी 15 साल 90 दिन है। भारत रविवार को आयरलैंड के खिलाफ दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच शुरू। बिलौटी पहुंची आयोग की टीम ने निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, हज 2027 16 साल बाद पटना एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन होगा। पहली बार सीधे जा सकेंगे जेद्दाह और मदीना। हिंदुस्तान की सुर्खी है, वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप से 188 की मौत। प्रभात खबर लिखता है, स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान गायब है PMCH के प्राचार्य को हटाया। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, NCERT सिलेबस में इमरजेंसी सेक्शन जोड़ा गया, 9वीं कक्षा को पढ़ाया जाएगा। आज अखबार की प्रमुख खबर है, शिक्षकों के तबादले के लिए नई नियमावली लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ

0: बैठक करेंगे। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग की आज कैमूर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और कटिहार समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी। और मुहर्रम की 10वीं तारीख आज यौमे आशूरा के रूप में मनाई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है ताजिया और मातमी जुलूस का आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
2: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
2: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
2: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

साथियों, अपने रेडियो सेट पर, साथी अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन पर आपने ट्यून किया है इस समय आकाशवाणी भागलपुर मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथी एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। पेशे खदमत है फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने।

कार्यक्रम का आगाज़ हम कर रहे हैं फिल्म आपके साथ के इस गाने के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जी साथियों, बादशाह फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ साथ।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just rupees 8,999 per month. Yes, rupees

0: 8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TLC apply.
1: Nexa.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: उमंग।
6: फिल्म संगीत के कार्यक्रम नगमे नए पुराने को जारी रखते हुए दोस्तों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा की आवाज़ में बॉम्बे फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा। बोल महबूब के हैं, तर्ज बनाई है AR रहमान ने।

जी साथियों, समय अभाव के कारण हम आपको ये गीत पूरा नहीं सुनवा पाए। कार्यक्रम के अंत में आप सुन रहे थे राम लखन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, रचना आनंद बख्शी की थी और सुरों में पिरोया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नकमे नए पुराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, वक्त हो चला है सुगम संगीत का, तो लीजिए सुनिए सुगम संगीत का ये कार्यक्रम। कलाकार हैं चेतन कुमार चौबे।

अभी आप सुन रहे थे नीरज की ये गीत रचना, और लीजिए अब सुनिए रैदास का ये भजन, कलाकार एक बार फिर चेतन कुमार चौबे।

इब्राहिम अश्क का लिखा ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। कलाकार हैं चेतन कुमार चौबे। लीजिए सुनिए एक भजन। मीराबाई का ये भजन आपके लिए प्रस्तुत है।

नेपाली का लिखा ये गीत कलाकार थे चेतन कुमार चौबे। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर, साथ ही एफएम बैंड के 100.1 मेगा हर्ट्स पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रातः के ठीक 10 बजे हैं और 32 सेकेंड हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गानों का हमारा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये युगल गीत, फिल्म का नाम है। जी दोस्तों, लीजिए सुनिए ये युगल गीत।

आमने सामने फिल्म का ये गीत अभी हम आपको सुनवा रहे हैं। रचना आनंद बख्शी की है और इस गाने के लिए धुन तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के महेंद्र कपूर की आवाज़ों में वो कौन थी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। गीतकार थे राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार थे मदन मोहन। जैसा थियो आप सुन रहे हैं फिल्म गानों का हमारा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, और इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुनिए। इस गीत को के बोल लिखा इस गीत का के बोल लिखे हैं आनंद बख्श ने, और इस गाने के लिए तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी।

लीजिए दोस्तों, अब हम आपको सुनवा रहे हैं जमाने को दिखाना है। इस फिल्म में शैलेंद्र सिंह का गाया ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत शोले फिल्म से। आवाज़ और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

फिल्म का नाम है आपकी कसम। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं सांत्वना साह। कार्यक्रम के आरंभ में ये प्रस्तुत कर रही हैं एक कन्यादान गीत।

0: आप सुन रहे थे एक विवाह गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: गांव तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
3: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
0: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं एक देवी गीत। कलाकार एक बार फिर सांत्वना साह।

इस देवी गीत के साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज की कलाकार थी सांत्वना साह। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए इस वाद्य संगीत के साथ।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियो वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर टू के इस गीत से, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ और विशाल मिश्रा ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है अनु मलिक और मिथुन ने।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का ये गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद करकरे ने, धुन बनाई है राम संपत ने।

अभी आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म नाम का गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म रेड 2 का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतसिर, पूर्णम अलाहाबादी और नुसरत फतेह अली खान ने। धुन बनाई है रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने।

0: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
2: उमंग,

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए, कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत, शीर्षक है गुलदस्ता। दोस्तों, संगीत वो भाषा है जो बिना कुछ कहे दिल की हर बात कह जाती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिल जाती है, तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों को समेटे हम लेकर आए हैं फिल्मी गीतों का एक महकता हुआ गुलदस्ता। और आप सभी सुनने वालों को मीनू का प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए प्यार, अपनापन, मिलन, बिछड़न और जीवन के अनेक रंगों से सजी कुछ चुनिंदा सदाबहार फिल्मी नगमे जो सीधे आपके दिल तलक पहुंचेंगे। तो आइए, छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए दिन भर की भागदौड़ और खो जाइए सुरों की इस हसीन दुनिया में। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब खुशी और उदासी एक साथ दिल में जगह बना लेती है। बेटी की विदाई का क्षण भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां आंखों में सपने होते हैं और पलकों पर आंसू। माँ बाप की ममता बेटी का स्नेह और बिछड़ने की कसक को बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करता है ये गीत। ये गीत हर उस दिल को छू जाता है जिसने कभी किसी अपने को विदा किया हो। तो आइए भावनाओं से भरे इस अमर गीत को सुनते हैं, फिल्म प्रेम रोग का ये सदाबहार नगमा। सुनिए और इन भावनाओं को अपने दिल में महसूस कीजिए।

दोस्तों, मोहब्बत का सबसे कठिन इम्तिहान शायद इंतज़ार ही होता है। जब कोई दिल के बहुत करीब होकर भी दूर हो जाए, तब उसकी यादें धड़कनों में बस जाती हैं। हर गुजरता लम्हा एक सवाल बनकर सामने खड़ा हो जाता है, क्या वो भी हमें याद करता होगा? रात की तन्हाइयों में जब चांद खिड़की पर उतरता है, तो फिर अनायास ही किसी का नाम लेने लगता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जाता, बस उम्र भर सीने से लगाए रखा जाता है। कहते हैं दोस्तों कि वो दूर है तो क्या हुआ, दिल के पास आज भी है। उसकी यादों का कारवां मेरे साथ आज भी है। आंखें भले ही राह तकते तकते थक जाएं, मगर मिलने की एक आस दिल में आज भी है। श्रोताओं, अगला गीत उसी बेचैनी, उसी तड़प और उसी इंतजार की दास्तान है। एक ऐसी पुकार जो किसी बिछड़े हुए अपने तक पहुंचना चाहती है, एक ऐसी सदा जो हर धड़कन के साथ दोहराई जाती है। तो सुनिए और यादों की इस भीगी हुई सुर में, कहानी में खो जाइए।

दोस्तों, मोहब्बत जब दिल की गहराइयों में उतर आती है तो फिर किसी का साथ सिर्फ एक आदत नहीं रहता, वो जीने की वजह बन जाता है। और जब वही शख्स दूर जाने की बात करे तो दिल की दुनिया जैसे बिखरने लगती है। कभी कभी किसी के जाने की आहट ही हजार आंसुओं की वजह बन जाती है, और जिसे हम अपनी दुआओं में मांगते हैं उसे खो देने का डर ही दिल को तोड़ जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वो जो मेरी हर खुशी का हिस्सा था, आज वही मेरी उदासी का कारण है। जिसे देखकर सुकून मिला करता था, आज उसी के जाने का डर है। श्रोताओं, प्रेम का दर्द बड़ा अजीब होता है। इंसान लाख मजबूत बनने की कोशिश करे, लेकिन अपने प्रिय की जुदाई का ख्याल आते ही दिल की सारी हिम्मत टूटने लगती है। रोक लेना चाहता है उसे ये दिल, मगर मोहब्बत में जोर कहाँ चलता है। आंखें नम हो जाती हैं और दर्द चुपचाप पलकों पर ठहर जाता है। मत जाओ कि तुम्हारे बाद ये शामें उदास हो जाएंगी, मत जाओ कि मेरी हंसी भी मुझसे रूठ जाएगी, मत जाओ कि तुम्हारे बिना धड़कनों का कोई मतलब नहीं होगा, तुम चले जाओगे तो क्या बचेगा मेरे पास। कुछ बिखरी हुई यादें, कुछ अधूरे ख्वाब और बस एक नाम जो हर धड़कन के साथ लिया जाएगा।

दोस्तों, प्रेम केवल साथ चलने का नाम नहीं, प्रेम तो उस भावना का नाम है जहां किसी की राहों में फूल बिछाने की चाह होती है, चाहे मंजिल में अपना नाम शामिल हो या फिर ना हो। मोहब्बत का सबसे सुंदर रूप समर्पण है, जहां पाने की जिद नहीं होती, बस साथ चलने की एक मासूम सी आरजू होती है। कभी कभी दिल किसी को अपना मान लेता है, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नाम के, बिना किसी वादे के। फिर उसकी हर खुशी अपनी लगने लगती है और उसके हर सफर में शामिल होने की तमन्ना जन्म ले लेती है। न ताज चाहिए, न तख्त चाहिए, न दुनिया की कोई पहचान चाहिए, बस इतना सा हक दे दे ऐ हम सफर, तेरे सफर में मेरा भी थोड़ा सा निशान चाहिए। कुछ प्रेम कहानियां मिलन से नहीं बल्कि त्याग और समर्पण से अमर होती हैं। वहां शिकायतें नहीं होती, बस एक खामोश दुआ होती है कि तू जहां भी जाए तेरी राहें आसान हो। अगर मैं तेरी मंजिल नहीं तो तेरे सफर की दुआ ही सही। मुझे अपना कहो या ना कहो, मगर इतनी इजाजत दे दो कि तेरी राहों की धूल बनकर ही सही मैं तेरे साथ चल सकूं। मुझे अपना कहो या ना कहो, मगर इतनी इजाजत दे दो कि मैं तुझे अपना कह सकूं। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम तो तेरे साथ चलने की दुआ लेकर चले हैं। तू हमें अपना साथी माने या ना माने, हमने तो तुझे अपनी रूह का हम सफर माना है। सुनिए और महसूस कीजिए उस प्रेम को जो अधिकार नहीं मांगता, सिर्फ साथ चलने की अनुमति मांगता है।

दोस्तों, मोहब्बत की सबसे ऊंची मंजिल शायद मिलन नहीं बल्कि दुआ होती है। जब कोई शख्स दिल की धड़कनों में बस जाए और फिर भी किस्मत उसे दूर ले जाए, तब सच्चा प्यार उसे बांधने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसके लिए हाथ उठाकर दुआ मांगता है। कुछ रिश्ते धरती पर शुरू होते हैं मगर उनकी खुशबू रूह तक उतर जाती है, जो साथ रहें या न रहें, उनका एहसास उम्र भर दिल के सजदे में बना रहता है। कहते हैं कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी किसी को खोकर भी उसे चाहना पड़ता है। और जब चाहत इबादत बन जाए तो शिकायतें दुआओं में बदल जाती हैं। श्रोताओं, कभी कभी हम किसी को अपनी हर खुशी, हर दुआ और हर ख्वाब में शामिल कर लेते हैं, लेकिन वक्त की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जहां साथ छूट जाते हैं और बस यादें रह जाती हैं, और फिर दिल खामोशी से कहता है, जाओ, अगर यही तुम्हारी मंजिल है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मोहब्बत जंजीर नहीं होती।

दोस्तों, हर सुर की अपनी कहानी होती है, हर गीत किसी न किसी दिल की जुबानी होती है। आज के इस फिल्म संगीत गुलदस्ता में भी हमने यादों, एहसासों और मधुर धुनों के कुछ फूल आपकी झोली में सजा दिए। उम्मीद है इन गीतों की महक देर तक आपके दिल में बसी रहेगी। इसी खूबसूरत उम्मीद के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए गुलदस्ते, नए गीतों और नए एहसासों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपने अपनों के साथ खुशियां बांटते रहिए। दीजिए इजाजत, मुझे नमस्कार, शुभ दिन और आपका, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।

अभी आप सुन रहे थे कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोग। प्रस्तुत करता है श्री पार्वती के।

0: नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नारी लोक कार्यक्रम में। बहनों, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उसके दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसकी अवैध तस्करी को रोकने के लिए 26 जून को प्रत्येक वर्ष मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 1987 में की गई थी। तब से ये दिवस दुनिया भर में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मनाया जाता है। वे पदार्थ जो व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, जैसे शराब, तंबाकू, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकीन, सिंथेटिक ड्रग्स आदि मादक पदार्थ कहलाते हैं। इसके दुरुपयोग से कई तरह के शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे हृदय, फेफड़ों और यकृत संबंधी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। साथ ही मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता, शारीरिक कमजोरी, नशे की बुरी लत लग सकती है। सामाजिक समस्याओं में परिवार में कलह, अपराधों में वृद्धि, शिक्षा और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव, साथ ही उक्त समस्या से ग्रसित व्यक्ति की समाज में छवि धूमिल होती है। आर्थिक दुष्प्रभाव में आय का अपव्यय, परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना, उपचार पर अधिक खर्च होना, इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इतनी खतरनाक बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं कि कभी कभी उन्हें इनकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। बहनों, नशा व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। हम कुछ उपायों को अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जैसे नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जानकारी देकर, विद्यालयों, महाविद्यालयों और समुदायों में जागरूकता फैलाकर, साथ ही सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाकर, और हम अपने बच्चों और किशोरों के प्रति बात करके, खुलकर उनसे बात करने के बाद वह इस तरह की बुरी लत में नहीं फंसेंगे। अब इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं बच्चों, बहनों, और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से, अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है।

0: यशस्वी मुखिया।
1: गांव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग का गांव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था। उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: अंतराल की बात बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है आप बहनों की पसंद पर आधारित कार्यक्रम फोन इन बहनों की पसंद का, जिसमें बहनें सुनती हैं अपनी पसंद के गीत और होती हैं हमारी और आपकी ढेर सारी बातें। तो चलिए जुड़ते हैं आज की हमारी पहली कॉलर से।

0: फोन इन बहनों की पसंद में स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं?
1: जी मेरा नाम मोनी है।
0: मोनी जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं भागलपुर से हूँ।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाई स्कूल में शिक्षिका हूँ।
0: आप हाई स्कूल में शिक्षिका, कौन सा विषय पढ़ाती हैं?
1: जी मैं हिंदी पढ़ाती हूँ।
0: तो आप हाई स्कूल की शिक्षिका हैं, तो वहाँ तो बच्चियाँ सब बड़ी बड़ी होंगी, तो उन बच्चियों को यौन शिक्षा के बारे में बताती हैं? उन लोगों के लिए यौन शिक्षा कितना आवश्यक है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: बिल्कुल, यौन शिक्षा तो बच्चियों के लिए और बच्चे के लिए भी, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही जरूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि उनको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उनके शरीर के अंगों के साथ में जो है ना रोज बदलाव होता है, तो ऐसे में उनके साथ में सही जो वार्तालाप होता है वो जरूरी हो जाता है। अगर उनको सही जानकारी होगी तो वो कभी भी किसी गलत रास्ते पे
0: हेलो, और इसके लिए सरकार की तरफ से एक विद्यालय में सखी सहायता डेस्क की भी स्थापना की गई है।
1: जी मेरा नाम मोनी है। ऐसा होता है कि लड़कियों को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ में क्या हो रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं,
0: क्यों हो रहे हैं
1: उनके बच्चों में, क्यों हो रहे हैं, तो ये सरकार की सहायता जो मिल रही है ये भी तो बहुत अच्छी
0: पहल है
1: बच्चों। हाँ, और साथ ही साथ हम शिक्षक बन के तौर पर जो हम लोग सिखाते हैं या उनको बताते हैं वो भी उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: और लड़कों को भी ये ज्यादा जानना जरूरी है क्योंकि वो सब साथ में रहते हैं, तो कई बार हो जाता है कि बहुत दिक्कत हो जाती है लड़कों को समझाना या लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी ये समझना चाहिए कि ये शारीरिक बदलाव है और ये हर किसी के साथ होता है,
0: इसी उम्र में कहीं ना कहीं शारीरिक आकर्षण भी होता है, तो लड़कों को भी इन चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: कोई भी सुनवा दीजिए।
0: हम सुनाते हैं ये गीत, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फोन इन में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: फोन इन बहनों की पसंद में स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं?
1: दीपा जोशी जी।
0: दीपा जी कहाँ से बोल रही हैं? क्या
1: मैं खरमन चक से बोल रही हूँ,
0: करती हैं आप?
1: हाउसवाइफ
0: हाउसवाइफ हैं दीपा जी आप तो। आप
1: जी।
0: हमें या हमारी बहनों को एक बात बताएं कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ऐसे में कैसे रखती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने। बहुत सच में गर्मी तो बहुत ज्यादा है, तो
0: जी
1: इसमें मैं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। जैसे नहीं होता है कि अब घर से निकल रहे हैं तो उससे पहले पानी अच्छी तरीके से हाइड्रेट हो जाना बहुत जरूरी है।
0: जी जी
1: घर से पानी वानी पी के निकले, छाता लेके निकले, गॉगल्स है, इस तरह की चीजों को लेके निकले ताकि बाहर परेशानी कम हो। साथ में एक पानी की बॉटल भी कैरी कर सकते हैं,
0: जी जी बिल्कुल
1: और घर में भी है तो इसे आम पन्ना हम लोग तो नहीं, नॉर्मल तरीके से हम लोग के घरों में गर्मी के मौसम में बनता है ताकि
0: जी जी
1: लू नहीं मारे।
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: बच्चे स्कूल भी, अभी स्कूल भी जाते हैं ना,
0: जी
1: वहां से गए तो बस आते के साथ तुरंत ठंडा पानी नहीं पी ले, बस ये
0: जी
1: छोटी छोटी चीजों
0: बातों
1: का
0: का
1: ध्यान
0: ध्यान
1: रखते
0: रखते
1: हैं।
0: हैं जी।
1: हाँ,
0: आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: कोई भी अच्छा सा सुना दीजिए। 90s के सारे गीत ही बहुत प्यारे हैं,
0: ठीक है, हम आपको
1: तो आप
0: सुनवाते हैं 90s के ये गीत।
1: जी
0: उम्मीद है कि
1: जी
0: आपको पसंद आएगा।

0: हेलो,
1: हेलो
0: फोन इन बहनों की पसंद में स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं? चिन्नू
1: जी, मैं चिन्नू कुमारी बात कर रही हूँ, भागलपुर
0: जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: से बात कर रही हूँ
0: क्या करती हैं आप?
1: जी। मैं तो बैंक में हूँ
0: बैंक में हैं, यानी आप एक कामकाजी महिला हैं। तो
1: जी।
0: आपको घर और बाहर दोनों जगह मैनेज करना पड़ता होगा, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है?
1: कामकाजी महिला होने के नाते तो मुश्किलें तो आती ही हैं,
0: जी
1: और सबसे बड़ी मुश्किल होती है समय का प्रबंधन। आपको घर भी देखना होता है।

0: है और अपने काम को भी देखना होता है।
1: जी, तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करती हैं, क्या आप परिवार का सहयोग मिल पाता है आपको?
0: जी, परिवार के सहयोग से ही सब आसान हो पाता है।
1: जी, तो ये बहुत ही सुलभ हो जाता है, यदि हमें परिवार का सहयोग मिले तो हम अच्छी तरह से दोनों जगह अपना काम कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: तो महिलाओं की तारीफ में ही सुना दीजिए, हुजूर इस कदर भी ना इतराज चल।
1: हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, मैं
0: फोन इन बहनों की पसंद में स्वागत है आपका। कौन बोल रही हैं? तनु
1: तनुप्रिया बोल रही हूँ, भागलपुर।
0: जी कहाँ से बोल रही हैं? क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ
0: हाउसवाइफ है तो
1: जी।
0: आप घर संभालती हैं, परिवार को, बच्चों को। इसके बाद का जो समय होता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं, यानी कि आपकी इसके अतिरिक्त क्या हॉबीज हैं?
1: मैं थोड़ा सा गाना गा लेती हूँ, गाना गाने का शौक है।
0: तो कुछ गुनगुना के सुनाइए हमारी बहनों को।

0: वो
1: को देखा तो एक ख्याल आया।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: गुलाम अली का गजल चुपके चुपके।
0: हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। फोन इन में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
2: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
4: इसी के साथ बहनों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आंखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
2: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरिपाइये, मन ही की प्रतीत।
3: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
2: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
3: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
2: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
3: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
2: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
3: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
4: Stephen, happy birthday to you!
5: Happy birthday to you, Stephen!
6: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen! Thank you,
7: congratulations!
6: Thank you, John! Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
4: Oh, fine, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
5: Oh, sure. Yes, yes. Why not? Why not?
4: Come. Yay.
5: Come.
4: John, please come here.
5: Oh, sure. Yay.
6: Join us for a drink, please.
2: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
5: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं,

0: होती है।
1: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
2: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
2: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
6: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली।

0: एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
1: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहेली।
7: हाँ।
6: गुड़िया गौरव सब तैयार?
8: हाँ जी बाजी, हम तैयार
6: हैं। वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली।

0: तू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
1: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
2: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
2: अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
2: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
3: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
4: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही एकदम सही।
3: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
2: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
2: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत अच्छे।
3: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ बिल्कुल।
2: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
2: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
2: हाँ।
4: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
2: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
2: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
2: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कई
2: दूर होता है इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
2: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ओ ऐसी वाली सर्दी ना।
2: हाँ।
0: अच्छी लगती है सर्दी।
2: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला ले।

0: लगे ये चलता जाता है,
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
2: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे,
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए किरण पाठक और उदय कुमार के गाए लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए किरण पाठक की आवाज में शिव भजन।

देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से राजभद्र

0: काई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं, अल्ट्राटेक। यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकरंग। किरण पाठक की आवाज में अब आइए सुनते हैं शिव भजन।

0: अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने, या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन सहित कई नेताओं ने नशा मुक्त भारत का संदेश दिया। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जीवन अपनाने का आह्वान किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में जुटे सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के विरुद्ध मजबूत लड़ाई लड़ी है। सरकार की कार्रवाई से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले कई गिरोहों का सफाया किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नशा मुक्त समाज के संदेश के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। प्राधिकार के सचिव पवन कुमार ने बताया कि रैली व्यवहार न्यायालय परिसर से शुरू होकर सुभाष चौक तक गई और वापस न्यायालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई।
1: 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोध दिवस एवं चक्री दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिले के सभी प्रखंड ब्लॉक में आज जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत व्यवहार न्यायालय से परिसर से पूरे सुभाष चौक होते हुए पूरे जामताड़ा में जागरूकता कार्यक्रम रैली निकाली गई। नशे के विरुद्ध प्रचार किया गया और लोगों से अपील की गई कि वो नशा ना करें, क्योंकि नशा करने से भविष्य खराब होता है।
0: रांची जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 से 30 जून तक विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक के लगभग 5,05,524 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद तथा दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले दिन 28 जून को जिले के 3,893 पोलियो बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी, जबकि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक देंगी। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। एक रिपोर्ट।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र में फायर सेफ्टी जांच अभियान के दौरान 17 संस्थानों के निरीक्षण में 14 संस्थान सुरक्षा मानकों पर फेल पाए गए। अपर नगर आयुक्त जितेंद्र यादव ने संचालकों को तत्काल फायर सेफ्टी उपकरण अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने अभिभावकों से भी नियमों की अनदेखी की सूचना देने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आज देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुँचे, जहां उन्होंने विधि विधान से बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए और देश तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। केंद्रीय मंत्री के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनका बलिदान आज भी करोड़ों लोगों को सत्य, न्याय और इंसानियत की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इमाम हुसैन की शहादत साहस, दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुहर्रम के अवसर पर कल निकलने वाले जुलूस को देखते हुए रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 10 बजे से जुलूस समाप्त होने तक अपर बाजार, महावीर मंदिर चौक, शहीद चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, सरजना चौक, मेन रोड और राजेंद्र चौक सहित कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य और यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने और आवश्यक होने पर ही इन क्षेत्रों की ओर जाने की अपील की है, ताकि मुहर्रम जुलूस शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। रांची नगर निगम चुनाव के 3 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी महापौर, उपमहापौर और पार्षदों का मानदेय तय नहीं हो सका है। रांची की मेयर रोशनी खलखो ने कहा है कि फंड और मानदेय नहीं मिलने से नगर निगम के नियमित कार्यों और विकास योजनाओं के संचालन पर असर पड़ रहा है।
3: मानदेय एक सम्मानजनक हो ऐसा हम लोग भी चाहते हैं, और पहले भी मानदेय की सुविधाएं थी, इसलिए सरकार से आग्रह किया है। जब चुनाव हम लोग जीत करके आए तो एक पत्र के माध्यम से सरकार को हमने अवगत भी कराया है, तो जल्द से जल्द उन्हें सम्मानजनक एक मानदेय मिलना ही चाहिए, ताकि सुविधाएं जनप्रतिनिधि है उनको मिल सके।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपए प्रति किलो है। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर बारलोंग के पास हुए भीषण सड़क हादसे में बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार कोयले लदे ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान सवारी वाहन को टक्कर मार दी। हादसे के बाद सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर सड़क सुरक्षा की मांग की। रांची के JSCA स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने JSCA प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि इस मामले में JSCA अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।
4: अगर उनका पास चेक नहीं होना है, फ्री एंट्री है, तो जैसे ही बुलाया उसको स्टेडियम के अंदर एंट्री करनी चाहिए, लेकिन उनको सुबह से शाम तक खड़ा रखा गया और भीड़ जब बेकाबू हो गई तो बेकाबू भीड़ में गेट खोला गया जिससे बैरिकेड टूटे, महिलाएं घायल हुई, बच्चे घायल हुए, कोई व्यवस्था महिलाओं के अलग से नहीं थी, बच्चों के नहीं थी।
0: झारखंड T20 क्रिकेट लीग फाइनल के दौरान रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसके बाद SSP राकेश रंजन के नेतृत्व में SIT गठित कर 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर उपराष्ट्रपति ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भारत ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ी सबसे मजबूत लड़ाई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जून से शुरू होगा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में की बढ़ोतरी, 1 जुलाई से नई दरें होंगी लागू। मुहर्रम जुलूस को लेकर रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। 27 जून को कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रहेगी रोक। और रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बैंड ताशा पार्टी के 7 सदस्यों की मौत, आक्रोशित लोगों ने NH-23 किया जाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम को पुनः जारी रखते हुए उदय कुमार की आवाज में सुनते हैं शिव भजन, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा अंतराल।
6: देश के नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
7: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसके लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
6: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग के गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार हैं उदय कुमार। इनकी आवाज में आप सुनते हैं मनोन गीत।

0: श्रोताओं, हमें खेद है कि तकनीकी खराबी के कारण इस लोकगीत को हम आपको पूरा नहीं सुनवा सके।
1: सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
1: 8700001424।
0: अंतराल के पहले आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थे उदय कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, सबसे पहले तो आज मुहर्रम है, तो सभी को मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, गर्मी का कहर देखते हुए कहना पड़ेगा कि आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। धूप से बचने के उपाय तो करने ही हैं, साथ ही सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर खाने के अलावा खूब तरल पदार्थों का सेवन भी करें। और तरल पदार्थ में क्या होगा, खूब पानी पिए, फलों का रस पिए और नारियल का पानी पिए, जिससे कि आपके शरीर में जो पानी की वो कमी ना होने पाए, तभी इस भयंकर गर्मी से बचा जा सकता है। बहनों, आज है 26 जून और आज के दिन वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। बहनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की स्थापना 1987 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक ड्रग मुक्त वैश्विक समाज का निर्माण करना है। वर्ष 2026 में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इससे नशा मुक्ति भारत अभियान विकसित भारत की पहचान के विशेष संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। यह विषय सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि जब तक हमारा समाज नशे की बेड़ियों से मुक्त नहीं होगा, तब तक एक सशक्त और विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। बहनों, 26 जून की तिथि का एक ऐतिहासिक महत्व है। यह दिन चीन में अफीम व्यापार के खिलाफ संघर्ष करने वाले चीनी अधिकारी लिन जेक्यू द्वारा हुमेन, जिससे अब हम गुआंगडोंग कहते हैं, में अफीम के व्यापार के खाले की याद में चुना गया था। आज के वैश्विक परिदृश्य में यह दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक वैश्विक अलार्म है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग एवं अपराध कार्यालय, जिसे हम UNODC की भी कहते हैं, कि वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और उपभोग ने वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बहनों, यह दिन दुनिया भर की सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, जिसे हम NGO कहते हैं, और नागरिकों को एकजुट होकर इस समस्या के खिलाफ ठोस कदम उठाने की प्रेरणा देता है। बहनों, आज के समय में नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा शिकार हमारे देश और दुनिया की युवा पीढ़ी हो रही है। युवा किसी भी देश की रीढ़ होते हैं, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़, मानसिक तनाव, पीयर प्रेशर, जिसे हम दोस्तों का दबाव भी कहते हैं, और भ्रामक प्रचार के कारण वे बहुत जल्दी नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर चोट पहुंचता है, आर्थिक पतन में वृद्धि होती है और भी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं होती हैं। बहनों, शारीरिक और मानसिक स्तर पर नशीले पदार्थों के सेवन से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन, एंग्जायटी और सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियां युवाओं को घेर लेती है। नशे की लत न केवल व्यक्ति की कार्य क्षमता को समाप्त करती है, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक रूप से भी कंगाल बना देती है। मानो नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा अक्सर चोरी, लूटपाट और हिंसा जैसे गंभीर अपराधों का रास्ता चुन लेते हैं, जिससे सामाजिक ताना बाना छिन भिन्न हो जाता है। साथ ही बहनों, एक अर्थशास्त्रीय और व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो नशीले पदार्थों का प्रसार किसी भी देश के मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन कैपिटल को सीधे तौर पर नष्ट करता है। इससे उत्पादकता में कमी होती है। युवा कार्यबल का नशे की गिरफ्त में आना देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP और विकास दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। साथ ही सार्वजनिक व्यय पर बहुत ज्यादा बोझ हो जाता है, क्योंकि सरकारों को नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों और पुनर्वास कार्यक्रमों पर भारी बजट खर्च करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकता था। साथ ही बहनों, नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न काला धन देश की समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में होता है। बहनों, भारत में नशे की समस्या से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत सप्ताह 27 जून से 26 जून का आयोजन किया गया है। इसके तहत कई अभिनव कदम उठाए गए हैं, जैसे कि नशा मुक्ति मित्र, नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं ताकि आम लोग भी इस अभियान से जुड़ सकें। बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जैसे स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में योग, खेलकूद, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर मेकिंग के जरिए युवाओं को से नो टू ड्रग, यानी कि ड्रग्स को ना कहे का पाठ पढ़ाया जा रहा है। साथ ही बहनों, सामुदायिक सहयोग के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर नशे के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। बहनों, UNODC और आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोध इस बात पर जोर देते हैं कि नशे के आदि व्यक्तियों को अपराधी मानने के बजाय एक मरीज के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण, समाज और परिवार को नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को हीन भावना या कलंक से देखने के बजाय सहानुभूति से मानसिक संबल देना चाहिए। साथ ही लत छुड़ाने के लिए वैज्ञानिक और चिकित्सीय पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए। सजा देने के बजाय काउंसलिंग, योग, ध्यान और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। बहनों, निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस केवल भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह हर नागरिक के लिए आत्मचिंतन और प्रतिज्ञा का दिन है। यदि हमें भारत को वैश्विक पटल पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो हमें अपने मानव संसाधन को स्वस्थ, सजग और व्यसन मुक्त बनाना होगा। आइए इस नशा मुक्ति दिवस 2026 पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं को और अपने परिवार को नशे से दूर रखेंगे बल्कि समाज में इसके खिलाफ जागरूकता की अलख जगाएंगे। नशे को छोड़ो और जिंदगी से नाता जोड़ो, एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेशों को।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बनकर के सुचारू रूप से सफल बनाया।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग कर

0: ता हिंदुस्तान।
1: एक बार फिर से सभी बहनों को कार्यक्रम में बहनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक शिव भजन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से किशनपुर लोहुआर पंचायत से ओम राकेश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: यशस्वी मुखिया राकेश कुमार शाह ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं था जिसके चलते मेरे यहाँ नागरिकों को बहुत कठिनाई होती थी प्रखंड जाकर काम कराना पड़ता था। मैंने ग्राम पंचायत में अपने ग्राम पंचायत पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया। अब पंचायत सरकार भवन के एक छत के नीचे ही मेरे पंचायत के लोगों का सारा काम हो जाता है। अब प्रखंड जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया गांव बनेगा देश बढ़ेगा सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: बहनों एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों अब सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता का विषय है शिशु का पोषण और माँ का सौंदर्य और वार्ताकार हैं श्रीमती पुष्पलता सिन्हा।
3: माँ बनना एक सुखद अनुभूति और खुशनुमा एहसास होता है क्योंकि नारी पूर्ण ही तभी होती है जब वह माँ बनती है। वह क्षण अविस्मरणीय होता है। दुनिया में मातृत्व ही ऐसा खूबसूरत अनुभव है जिसमें एक शरीर में नव जीवन होता है। स्त्री जब पहली बार शिशु को जन्म देती है तब उस शिशु के जन्म के साथ एक माँ का भी जन्म होता है। उसके इस स्वरूप से ही सृष्टि सृजन का रहस्य भी आलोकित होता है। माँ बनना न सिर्फ स्त्री जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बल्कि नया जन्म भी है क्योंकि उसे मातृत्व का सुख अपनी जिंदगी और सेहत के प्रति कुछ जोखिम उठाकर ही मिलता है। वैसे अधिकतर मामलों में गर्भधारण एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रकृति के अनुसार चलती है लेकिन इसमें सावधानी रखना आवश्यक है। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही से कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। गर्भधारण के बाद से ही शरीर के हार्मोन्स में कई तरह के परिवर्तन आने लगते हैं जिसके चलते स्त्री को कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। गर्भकाल में गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता का देखभाल करना और इस संदर्भ में शिशु और माता के हित में उचित आहार व्यवहार की सलाह देना इस आधुनिक युग में बड़ी समस्या है। गर्भस्थ शिशु को पोषण माँ से ही मिलता है इसलिए गर्भावस्था में माँ को संतुलित और पौष्टिक आहार देना अति आवश्यक होता है। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार का मतलब है ऐसा भोजन जिसमें लौह प्रोटीन मिनरल्स कैल्शियम विटामिन वसा कार्बोहाइड्रेट और पानी प्रचुर मात्रा में

सम्मिलित हो। वैसे तो संतुलित आहार प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है, पर गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी है। ये कहना कि गर्भवती स्त्रियों को दो मनुष्यों का भोजन कराना चाहिए, ये बातें गलत है, बल्कि उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए जिससे कि बच्चे के जन्म के बाद माँ को भरपूर दूध हो। इस समय गर्भवती स्त्रियों को आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की पूर्ण मात्रा में सेवन करनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु को इससे संपूर्ण पोषण मिलता है। शिशु जन्म के बाद माता का दूध ही बच्चे का सर्वोत्तम और मुख्य आहार है। बच्चे के जन्म के बाद जो पहला दूध होता है वह कोलेस्ट्रम कहलाता है। यह द्रव पीले रंग का होता है। इस द्रव में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, विशेषतः इम्यूनोग्लोब्यूलिन नामक तत्व पाए जाते हैं जिससे शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है जो शिशु की आँख की रोशनी बढ़ाता है। शुरू के दिनों का दूध पतला होता है क्योंकि आरंभ में शिशु के पाचन अंग पूर्णतया विकसित नहीं होते हैं, अतः वह इसे सरलता से बिना कोई श्रम किए पचा लेता है। जैसे जैसे शिशु की शारीरिक वृद्धि होती है वैसे वैसे माता का दूध भी गाढ़ा होने लगता है। इसमें पोषक अवयवों की मात्रा भी बढ़ जाती है। माता का दूध पौष्टिकता से भरपूर होता है। इसमें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, पानी होता है जो संतुलित मात्रा में होती है। यह मस्तिष्क का सही विकास करता है। इसमें प्राकृतिक लैक्सेटिव होता है जो बच्चे के पेट को साफ करता है जिससे पीलिया होने का खतरा नहीं रहता है। माँ के दूध से शिशु में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है। लौह तत्व की अधिकता होने से शिशु में एनीमिया होने का भय नहीं होता है। माँ का दूध शिशु को संक्रामक रोगों से बचाता है। यह दूध प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कान का इन्फेक्शन, आँख, हृदय, गुर्दे की बीमारी, दमा, कैंसर की बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। बच्चे को निमोनिया, कुपोषण और एलर्जी से भी बचाता है। बच्चे को पहले के 6 महीने सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए। इससे उसका बौद्धिक विकास भी होता है। माँ का दूध पीने से बच्चे और माँ के बीच आपस में प्यार और विश्वास पनपता है। बच्चे का दूध पीने का समय निश्चित करें। जन्म के बाद शुरू में तो शिशु थोड़ा थोड़ा दूध पीता है, इसलिए जल्दी जल्दी दूध पिलाएं। 3-4 दिन 3-3 घंटे पर 10-10 मिनट तक दूध पिलाना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले बच्चे को पेट भर दूध पिलाएं जिससे कि रात्रि में माँ बच्चे को ज़्यादा परेशानी ना हो। इससे उसकी आदतें भी ठीक बनी रहेंगी और पाचन शक्ति भी ठीक रहती है। रात में कोशिश करें कि 11 बजे से 4 बजे सुबह तक बच्चा भूख से ना रोए, इसलिए पेट भरकर ही सुलाएं। इतना समय मिलने से दूध ठीक से पचता रहता है और उदर रोग होने की संभावना नहीं होती है। बच्चे को जबरन दूध कभी ना पिलाएं। माँ दूध पिलाते समय बच्चे को अपने शरीर के साथ लगाती हैं, प्यार से सहलाती हैं जिससे बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और खुश रहता है। माँ का ये दूध बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है और माँ को भी सुख देता है। बच्चा जब 6 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसे ऊपर का आहार भी देना आवश्यक होता है। गाय का दूध अगर देना चाहें तो आधा दूध आधा पानी मिलाकर गर्म कर लें और फिर उसे ठंडा करके दे दें। बच्चे को माता के दूध के साथ विभिन्न फलों का रस, फल, उबली हुई हरी सब्जी, मूंग दाल का पानी देना उचित होता है। मौसमी, अनार, सेब, अंगूर जैसे फलों का रस देना उचित है। नारियल का पानी भी देना श्रेयस्कर होता है। उबली हुई हरी सब्जी में पालक का रस, टमाटर का रस, परवल का रस भी बच्चे के सेहत के विकास में अच्छी भूमिका निभाता है। जब बच्चा 8 से 10 महीने का हो जाए तो उबाली हुई सब्जी जैसे पालक का साग, चौलाई की साग, परवल, कद्दू, गाजर, पपीता, चुकंदर देते रहना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ी मात्रा में पका हुआ अन्न भी देना चाहिए। 9 से 10 महीने के बच्चे के लिए माता का दूध ही काफ़ी नहीं होता है, इसलिए ऊपरी भोजन को संतुलित, सुपाच्य और समय समय पर देते रहना चाहिए ताकि बच्चे को समुचित पोषण मिलता रहे और उसकी मानसिक शारीरिक विकास सही ढंग से होता रहे। मूंग दाल की खिचड़ी

सूजी का हलवा, पका हुआ केला, दलिया दिया जाना चाहिए। बच्चे के सेहत के प्रति यदि सजग हैं तो याद से उसे चीनी की आदत न लगाएं। उसे चीनी की जगह गुड़ या शहद दे सकते हैं। भात के बदले उबली हुई आलू दीजिए या कम मात्रा में माड़ भात की आदत डालें। 12 घंटे भिगोई हुई किशमिश का पानी दे सकती हैं। ऐसे सब खाद्य पदार्थ देते रहने से बच्चे के शरीर में लौह तत्व की कमी नहीं होती है, जिससे एनीमिया होने का डर नहीं होता है। संतुलित आहार देते रहने से बच्चे के शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व समान रूप से मिलते रहता है। बच्चे का आहार हमेशा ही आसानी से पचने वाला होना चाहिए। तीखा, खट्टा, मसालेदार, ज़्यादा गर्म, कड़वा या कठिनता से पचने वाला भोजन नहीं देना चाहिए। बच्चा जितना कोमल है उससे ज़्यादा कोमल उसका अंग होता है। इस बात को याद रखकर उसके आहार को देना चाहिए। संतुलित, सुपाच और स्वस्थ आहार देने से बच्चे के कोमल मन और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चा हर तरह से स्वस्थ पोषित होता है।

0: लेकर शिशु की समुचित देखरेख करते करते उनमें जो निखार आता है वो कृत्रिम लिपापोती से नहीं मिल सकती है। गोद में बच्चे को लेकर जब माँ दूध पिलाती हैं तो उस समय प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स निकलता है जो माँ और बच्चे दोनों का तनाव कम करते हैं और आराम प्रदान करता है। स्तनपान कराने से शिशु कम रोते हैं क्योंकि माँ के दूध में एंडोर्फिन नामक तत्व पाया जाता है जो बच्चे के दर्द को कम करके उसे आराम देता है। माँ गोद में लेकर ही शिशु को स्तनपान कराती हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक कर्म है। इससे माँ को शारीरिक एवं मानसिक लाभ होता है। शारीरिक लाभ इस प्रकार होता है कि गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय और शरीर का वजन बढ़ जाता है, वो प्राकृतिक रूप से नियंत्रण होता है क्योंकि दूध बनने की क्रिया में 200 से 500 कैलोरीज प्रतिदिन खर्च होती है। इससे माँ का वजन घटकर जल्द ही फिर से आकर्षक और सुडौल होने लगती है। साथ ही साथ जब बच्चा बार बार दूध खींचता है तो शरीर में स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो दूध के बहाव को नियंत्रित रखता है, साथ ही गर्भाशय को सिकोड़ता है जिससे रक्त का स्राव बंद होकर प्रसव से पूर्व की सामान्य स्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे माँ का बढ़ा हुआ पेट भी कम होता है। मानसिक लाभ इस प्रकार से है कि माँ बच्चे के जन्म के पश्चात काफ़ी भावुक हो जाती हैं। गर्भकाल व प्रसव के दौरान हुई कठिनाइयों और कष्टों पर स्तनपान मरहम का काम करता है। दूध पिलाने वाली माँ मानसिक रूप से संतुष्ट और अधिक आत्मविश्वास से भरपूर होती हैं। माँ बच्चे के जीवन की धुरी होती हैं और वह यह सोचकर ही आत्मसंतोष से भर जाती हैं कि वह अपने शरीर से बच्चे को पौष्टिकता प्रदान कर रही हैं जिससे वह बड़ा हो रहा है। उस वक्त माँ के चेहरे की सौंदर्यता देखते ही बनती है। उस सुंदरता को सिर्फ माँ ही महसूस कर सकती हैं। इन सब के अलावा कई अनुसंधानों से पता चला है कि दूध पिलाने वाली माँ का भी बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है, जैसे कि स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, मधुमेह, दिल का दौरा, गठिया। साथ ही परिवार नियोजन और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं ओम प्रकाश कुमार ग्राम पंचायत राज भटगाई और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहें। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: बहनों, इसी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया हो। फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत सभी को। आरू का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों से सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य को खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी

के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में यौम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे का माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थाई पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हालाकी में 68 मिलीमीटर और सोनवर्षा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नव नियुक्त पीडीएस डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

वज़ारत इत्तलात व नशरियात के यूट्यूब चैनलों पर भी इस प्रोग्राम का सीधा नशरिया होगा। रियासत के वज़ीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि रियासत में असातज़ा के तबादले के सिलसिले में हुकूमत संजीदा है। जनाब तिवारी ने पटना में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि हुकूमत ने ट्रांसफ़र पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे असातज़ा का तबादला सहल, शफाफ और बदउनवानी से पाक तरीके से हो सकेगा। माहे मुहर्रमुल हराम की आज 10वीं तारीख है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की मैदान करबला में शहादत की याद में यौम आशूरा मनाया जाता है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जलसा और जुलूस का अहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी सदाकत और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब देती है। रियासत के गवर्नर सैयद अता हसनैन ने आवाम से रिवायती अकीदत एहतराम, आपसी खैर सगाली और अमन के माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, कुर्बानी, खैर सगाली के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। इधर मुहर्रम के पेश नज़र पूरी रियासत में नज़्म नास और अमन बरकरार रखने के लिए तहफ़ुज़ के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इंतजामिया ने सभी थानों को जुलूस के रास्ते में तहफ़ुज़ का इजाफी नज़्म करने की हिदायत दी है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान अमन बहाल रखने के लिए ज़िला इंतजामिया पूरी तरह चौकस है। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद सुल्तानगंज, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 मुकामात पर मजिस्ट्रेट की क्यादत में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। साथ ही जुलूस के रास्ते और पहलाम के मुकामात के आसपास आरजी पुलिस चौकी भी बनाई गई है। पटना समेत जुनूबी बिहार के कई ज़िलों में बारिश से लोगों को शदीद गर्मी से जुज़वी राहत मिली है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और मगरबी चंपारण ज़िले में कुछ मुकामात पर शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक शिवहर में सबसे ज़्यादा 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं मगरबी चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सोनबरसा में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने कहा है कि मानसून की शुमाली सरहद अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के बकिया हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की हालत बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी का इम्कान है। अररिया ज़िले के जोकीहाट थाना इलाके से पुलिस ने 340 लीटर गैर मुल्की शराब के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिला मजिस्ट्रेट सावन कुमार और एडीएम सचिदानंद सुमन ने वीरपुर सब डिवीज़न के 14 और सुपौल सब डिवीज़न के 15 नए पीडीएस डीलरों को लाइसेंस फराहम किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
6: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 8700001424।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम

0: सेन के बलिदान का स्मरण किया। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाठी के काटलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद्र स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म मोहब्बत का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना फिल्म बाजार का गीत जगजीत कौर और पामेला चोपड़ा की आवाज में। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फिल्म का नाम है दुल्हन। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज लता मंगेशकर की।

0: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है मदन मोहन ने।

भी आपने सुना फिल्म दस्तक का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। मेरे हमदम मेरे दोस्त, अब आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। अपने सांध्यकालीन प्रसारण के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति दीजिए। न्यूज ऑन AIR ऐप और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

0: साथियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाते गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ। शीला जी,
1: हाल चाल
0: जी? हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पानी पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी।
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप, सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, मैं
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती है आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक है आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपसे बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है, रेडियो सुनती हूँ,
0: गाते भी है?
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी।
0: जी, और गाते भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ।
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: अच्छा गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लट से बाहरी आई, देवी जी के मंदिर

0: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: जी।
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: सुरजीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी,
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना
1: कोई
0: चाहती हैं?
1: भी सुना दीजिए।
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ, और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में
1: जी
0: आप निपुण हैं, है ना?
1: जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प और हेमल कसर से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने
1: हाँ
0: उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी,
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ,
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी किसी
1: जी
0: को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: और
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: मुझे
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी

0: दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है।
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई
1: हाँ
0: करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिहार पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: जी
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते।

थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था, क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की। हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था। हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें

फैलाए एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: युववाणी सुनने वाले सभी दोस्तों को बंटी का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। उम्मीद है आपने ट्यून कर लिया होगा हमें अपने रेडियो सेट या फिर अपने स्मार्टफोन पे। जरिया जो कोई भी हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपका लगाव मायने रखता है जो जुड़े हुए रहते हैं हमेशा बेतार के तार से। तो आइए प्यारे साथियों, इस जुड़ाव को देते हैं फिर से एक नया आयाम, हर शाम की तरह इस शाम भी युववाणी के साथ। साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि क्या कुछ सहेज कर लाए हैं हम आज की युववाणी में। दोस्तों, कार्यक्रम में सबसे पहले हम बातें करेंगे मुहर्रम त्यौहार के विषय में। इसके बाद सुनवाएंगे आपको एक पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता के बाद वक्त होगा आर्थिक परिक्रमा का और अंत में समसामयिक गतिविधियों पर डालेंगे एक नज़र और लेंगे फिर आपसे विदा। तो बेहद खास होने वाला है आज का कार्यक्रम, यूं ही ट्यून्ड रहिएगा हमारे साथ। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
3: पर दी,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा,
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: Ignoring frequent sneezing or blocked nose for too long, untreated allergies may lead to more serious health problems. Come, let's hear expert advice from city's renowned doctor.
8: Hello, I am Dr. Nitish, general surgeon from Munger. Allergies are not always just sneezing. If allergy problems are ignored for a long time, they can

0: sometimes lead to asthma, sinus problems, ear infection or breathing trouble. Doctors call this the allergic march. That's why it is important to treat allergy early. Avoid triggers like dust and smoke and take proper medical advice. Don't ignore the sign. Healthy breathing start with the right care. Don't ignore allergy problems. Treat them the right way and the breathe comfortably.
1: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
2: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युववाणी में। दोस्तों आज का दिन खास है मुहर्रम त्यौहार की वजह से। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में शोक के महीने के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम महीने की शुरुआत भी ईद की और बकरीद की तरह ही चाँद देखने पर तय की जाती है। आज से लगभग 1400 साल पहले इराक के करबला के मैदान में इमाम हुसैन और यजीद की सेना के बीच धर्म और न्याय की लड़ाई हुई थी। मुहर्रम शोक का प्रतीक है दोस्तों। इस महीने लोग इस शहादत की याद को फिर से याद करते हैं, गम मनाते हैं और यह महीना इस्लामी समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है बल्कि यह उन घटनाओं को भी याद करने का समय है जो इस्लाम के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। दोस्तों मुहर्रम को एक पर्व के रूप में गहरे शोक और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, क्योंकि इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है। मुहर्रम से करबला की घटना की यादें गहरी जुड़ी हुई हैं, जो गम के साथ साथ साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को प्रदर्शित करती है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की तानाशाही और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इस शहादत ने मुहर्रम को शोक, सम्मान और आत्मचिंतन का प्रतीक बना दिया। दोस्तों इस दिन के कार्यक्रमों की बात करें तो इस दिन शोक सभाएं आयोजित की जाती हैं, जिन्हें मजलिस कहा जाता है। इन सभाओं में करबला के वाकये का जिक्र किया जाता है। लोग काले कपड़े पहनते हैं जो शोक का प्रतीक है और कई स्थानों पर ताजिया निकाला जाता है। ताजिया करबला में शहीद हुए लोगों की कब्रों का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे बड़े सम्मान के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। इसके साथ ही लोग मातम करते हैं, इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस दिन रोज़ा रखने से पापों का प्रायश्चित होता है। इस पवित्र त्यौहार का मूल संदेश सत्य, धार्मिकता, त्याग, साहस और बलिदान है। तो दोस्तों आज की बातें यहीं तक। आइए रुख करते हैं डेली ट्रिविया की ओर, जो हमारा डेली सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम पूछते हैं आपसे हर दिन एक सवाल। आज का सवाल है, आकाशवाणी का आदर्श वाक्य यानी कि टैग लाइन क्या है? आप अपने जवाब अभी भेज सकते हैं हमारे मेल आईडी phair@gmail.com पर। डेली ट्रिविया के बाद बारी है दोस्तों हमारी एक और डेली सेगमेंट फन फैक्ट्स। आइए फन फैक्ट्स में जानते हैं आकाशवाणी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों भारत में रेडियो के प्रसारण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा प्रसार भारती के माध्यम से संचालित एवं परिचालित किया जाता है। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य है श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, उसका निर्माण करना एवं प्रस्तुति तथा प्रसारण करना। आकाशवाणी के कार्यक्रमों का मुख्य कथ्य संदेश या कहें उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि श्रोता तक विकास संबंधी जानकारियाँ पहुँच सके और उन्हें अधिक से अधिक जागरूक और प्रबुद्ध बनाया जा सके। तो आज के लिए सेगमेंट में बस इतना ही दोस्तों। आइए एक सूफी सॉन्ग सुनते हैं, जिसे लिया है हमने फिल्म रॉकस्टार से। आवाज़ें हैं AR रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की।

0: इस बेहतरीन सूफी गीत के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवावाणी में। दोस्तों कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है एक वार्ता का। आज के वार्ता का विषय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वार्ताकार हैं बी नूर अफसान।
1: आज का मेरा विषय एक ऐसी शख्सियत के इर्द गिर्द है, एक ऐसी हस्ती के इर्द गिर्द है जिनको हम सभी मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसा नाम है जो किसी भी धर्म, जाति, पंथ, रंग से आने वाले हर भारतीय की आंखों में गर्व से भरी चमक लाने के लिए काफ़ी है। भारत देश इस कलाम साहब के लिए जितना सम्मान और कृतज्ञता रखता है वह किसी भी चीज़ से परे है। कोई भी इंसान विज्ञान, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने देश के लिए जो किया है यही कारण है कि आज भारत विश्व परमाणु ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी और कई अन्य क्षेत्रों में अन्य देशों को कठिन टक्कर दे पा रहा है। आइए सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम जिले के धनुपगोड़ी गांव के एक नहायत ही गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर कलाम अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। उनकी जीवन हमें यह बताती है कि जीवन अपार संभावनाओं का नाम है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि गरीबी सफलता के रास्ते में रुकावट है तो उन्हें डॉक्टर कलाम की जिंदगी से सबक लेनी चाहिए। कैसे एक अखबार बेचने वाला बालक मिसाइल मैन और देश का पहला व्यक्ति यानी राष्ट्रपति बन गया। भारत के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी लेने से लेकर भारतीय मिसाइलों के विकास का नेतृत्व करने तक कलाम साहब ने देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया। अपनी कार्य अवधि के दौरान उन्होंने दो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के साथ काम किया, एक है DRDO और दूसरा इसरो। आज हम जानेंगे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम के महत्वपूर्ण योगदान। यह बात उस समय की है जब भारत सैटेलाइट लॉन्च करने और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शायद ही बात करता हो, तब एक व्यक्ति आया और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य बदल दिया। APJ अब्दुल कलाम को इसरो में परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनके नेतृत्व में देश ने ग्राउंड जीरो से स्वयं के SLV का निर्माण करना संभव कर लिया। जुलाई 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के निकट की ऑर्बिट में इंजेक्ट किया, जिससे देश एक विशिष्ट स्पेस क्लब का सदस्य बन गया। एक और माइलस्टोन तब भारत ने अपने नाम किया जब डॉक्टर कलाम ने देवीला और वैलियंट के निर्देशन की स्थिति का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य SLV कार्यक्रम की सफल तकनीक के आधार पर बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन करना था। यह तब ही था जब शक्तिशाली मिसाइल के साथ अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण किया गया था और इसलिए डॉक्टर कलाम ने मिसाइल मैन का खिताब अर्जित किया। 1993 में PSLV सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। ये डॉक्टर कलाम की ही देन है कि 2017 में 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च किए गए। 1979 वो समय था जब दुनिया का कोई भी देश भारत को मदद नहीं कर रहा था और आज वही देश अब भारत से मदद मांगते हैं। हमने USA की मदद की, नीदरलैंड की मदद की, स्विट्जरलैंड की मदद की, इसराइल, कजाकिस्तान, UAE की मदद की थी। सभी को मिलाकर 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। भारत के लिए अविस्मरणीय क्षण था जब देश अंततः एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर कलाम तब तत्कालीन प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्यरत थे और पोखरण में कई परमाणु परीक्षणों के पीछे उनका ही इंटेलिजेंसी थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जुलाई 1992 से 1999 तक DRDO के CEO के रूप में उन्होंने पोखरण सेकेंड विस्फोटों का निर्देशन किया। उनके प्रयासों और समर्पण के परिणाम स्वरूप भारत अब परमाणु सशस्त्र राज्यों की सूची में है। पोखरण 2 परीक्षण ने भारत की नो फर्स्ट यूज नीति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतिज्ञा थी कि भारत कभी भी परमाणु प्रथम स्ट्राइक नहीं करेगा और गैर परमाणु संचालित राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा और ऐसी मटेरियल और टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट को सख्ती से नियंत्रित करेगा। अगर आप सोचते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने केवल इंजीनियरिंग और वैमानिक क्षेत्र में योगदान दिया है तो आप गलत, क्योंकि चिकित्सा में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने हृदय रोग स्पेशलिस्ट सोमा राजू के साथ सहयोग किया और बजट के अनुकूल कोरोनरी स्टेंट बनाया। इसे कलाम राजू स्टेंट भी कहा जाता है। दोनों ने वर्ष 2012 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य प्रशासन के लिए एक टैबलेट कंप्यूटर डिजाइन किया जिसे कलाम राजू टैबलेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जब भारत को WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया 1995 और 1996 में APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने ऑर्थोसिस कैलिपर्स का उत्पादन करने के लिए अंतहीन काम किया जो बाजार में उपलब्ध वजन के 10वें वजन का था। था। इन फ्लोर रिएक्शन कैलिवर्स ने स्पीड और चलने को कम दर्दनाक और बोझिल बना दिया, जिससे बच्चों को मदद के बिना अधिक स्वतंत्र रूप और आसानी से चलने में आसानी हुई। इस तरह हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने सिर्फ अंतरिक्ष एजेंसी में ही काम नहीं किया, बल्कि विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका एक मशहूर कथन है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उनकी तरह जलना सीखो। डॉक्टर कलाम की जिंदगी हम सभी भारतीयों के लिए एक अच्छा सबक है। अब्दुल कलाम 7 साल पहले 27 जुलाई 2015 को शिलांग में IIM के कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम में अपना भाषण देते वक्त वे अचानक बेहोश हो गए एवं उनकी हृदय की गति रुक गई और भारत का यह चमकता सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। लेकिन APJ अब्दुल कलाम हम भारतीयों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे।
0: APJ अब्दुल कलाम। श्रोता मित्र, अभी सुन रहे थे ये पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ताकार थी बी नूर अफसान। आइए दोस्तों एक और सूफी सॉन्ग सुनते हैं, फिल्म जिला गाजियाबाद से। आवाज़ें हैं मोहित चौहान और तुलसी कुमार की। तो एंजॉय कीजिए और ट्यून रहिए युवा वाणी के साथ।

इस बेहतरीन सोफी सॉन्ग के बाद फिर से स्वागत है दोस्तों आपके फेवरेट रेडियो शो युवानी में। युवानी में दोस्तों अब वक्त है हमारे वीकली सेगमेंट आर्थिक परिक्रमा का। आज आर्थिक परिक्रमा में प्रस्तुत है विश्व बैंक का लेखा जोखा। दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों की सरकारों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण, तकनीकी सहायता और नीतिगत सलाह प्रदान करता है। इसे 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD ही विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह पांच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। 179 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। विश्व बैंक दो तरह के रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें मानव पूंजी सूचकांक और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट शामिल है। विश्व बैंक के अंतर्गत पांच प्रमुख विकास संस्थान कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, दूसरा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, चौथी संस्थान है बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी MIGA और पांचवां संस्थान है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि ICSID। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए आर्थिक परिक्रमा में बस इतना ही। आइए एक और सूफी सॉन्ग सुनते हैं फिल्म यारियां 2 से। गायक कलाकार हैं। गायक कलाकार हैं सचेत टंडन।

आइए दोस्तों, चलते चलते करंट अफेयर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा प्रदान किया है। हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय को भारतीय मानक ब्यूरो BIS से 4 ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तुषार मेहता को हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओडिशा में किया गया। हरमनप्रीत कौर 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं और हाल ही में आयोजित FIA नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सेगमेंट में बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी दोस्तों अब करने लगी है इशारा, अब इस शो को रैप अप करने का वक्त हो गया है। चलते चलते यहीं कहेंगे कि हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए युवाओं की वाणी युवानी। मिलेंगे फिर इसी वक्त इसी फ्रीक्वेंसी पर, तब तक के लिए अपने दोस्त बंटी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवावाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं, वक्त है फिल्म संगीत का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉर्डर 2 का गीत, विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजों में।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं फिल्म ओ रोमियो का गीत, शोभा सिंह सितारक की आवाज़ में।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: इस अंतराल के बाद फिल्म संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल को। फिल्म है धड़क 2।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे और अब कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज की सभा में अब से थोड़ी ही देर बाद शाम 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत खेती गृहस्थी। इसमें आज हम श्रोताओं को रामेश्वर कुमार की वार्ता सुनवाएंगे वृक्ष संरक्षण योजना। साथ ही साथ किसान भाई महुआ कोहरे की खेती के बारे में भी मड़ुआ कोहरे की खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वार्ताकार होंगे डॉक्टर महेश कुमार सिंह। शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार की वार्ता तंबाकू सेवन के दुष्प्रभाव। 7:52 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा सूरलहरी, कलाकार होंगे डॉक्टर अजय राय। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप कार्यक्रम रजनीगंधा में। 9:30 पर आप सुनेंगे समन्वित शतदल कार्यक्रम। 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई वादन सुनिए राग शंकरा में। और 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पसंद आपकी।

श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल की सभा सुबह 5:55 पर खेत खलिहान कार्यक्रम के साथ आरंभ होगी। 6:05 पर आप सुनते हैं चिंतन मनन। 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए भेंटवार्ता, मूत्र की थैली में संक्रमण। भेंटवार्ताकार होंगे डॉक्टर ब्रजकांत सिंह। 7:00 से लेकर 7:55 तक आप सुनते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम में कल हम आपको अभय कुमार सुमन के गाए कुछ गीत और भजन सुनवाएंगे। साथ ही साथ आप सुनेंगे अजय नारायण राय की वार्ता माप तौल संबंधी कानून। 9:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। कलाकार होंगे स्वामी प्रणवानंद। 10:30 पर लोक गीतों के कार्यक्रम में कलम

आपको चावालाल मंडल के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। 11 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, फोन इन आपकी पसंद। 12 बजे बहनों का कार्यक्रम लेकर

मिनट पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम लेकर आते हैं हम युववाणी। 5:30 पर आप सुनते हैं फिल्म संगीत और 6 बजे ग्रामीण बंधुओं का कार्यक्रम होता है ग्राम जगत खेती गृहस्थी। 7:10 पर कल हम आपको नवल किशोर पंडित के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। 7:52 पर सुरलहरी की कलाकार होंगी पायल चक्रवर्ती। रात्रि 8 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 9:30 पर विज्ञान भारती कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम विवरण में अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है मीडियम वेव 205.76 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बंधुओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: स्वागत है आप सबों का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको पन्नू का नमस्कार
1: और सभी को आरू का भी नमस्कार। पन्नू भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार आरू भन्ना, और सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है?
1: सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन देख ही रहे होंगे कि मानसून बहुत लेट है और कहीं ना कहीं हम लोग का जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है इस वजह से।
0: जी जी जी, भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे परेशानी तो ज्यादा बढ़ी गई है।
1: बिल्कुल,
0: अब आद्रा नक्षत्र भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अगर वर्षा नहीं हो रही है तो हमारे किसान भाई भी काफी परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि वर्षा होगी तभी धान का बिचड़ा जो है डाला जाएगा, और समय से अगर बिचड़ा नहीं तैयार होता है तो दिक्कत तो होती ही है।
1: बिल्कुल, और सिर्फ किसान भाइयों को नहीं, ये नहीं, सबको परेशानी होने वाली है, क्योंकि अगर फसल सही नहीं हुआ तो महंगाई पहले से ही बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ढंग से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस इतना कमाते हैं कि खाना पानी हो सके, और अगर महंगाई बहुत बढ़ गई तो बहुत स्थितियां विपरीत
0: हो जाती हैं। जो हम अपना रूटीन बनाते हैं आम जीवन यापन के लिए, जो आवश्यकता होती है, महंगाई होने पर उसकी भी आपूर्ति हम नहीं कर पाते हैं, और किसान भाइयों के लिए तो और ज्यादा समस्या होती है, क्योंकि अगर समय पर वर्षा नहीं होता है, अगर समय पर खाद पानी खेतों में नहीं मिलता है तो उनका उत्पादन अच्छा नहीं होता है, और समय से वर्षा होगी, समय से खाद पानी खेतों में डालेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, जिससे वे अपने भविष्य का निर्माण भी करते हैं, साथ साथ अपने बाल बच्चों के पठन पाठन पर भी विशेष ध्यान देते हैं, ताकि उनकी आने वाली यानी सबों की जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, उनका जीवन सुगम हो सके। वो जो कार्य योजना बनाते हैं अपने भविष्य उज्ज्वल भविष्य का निर्माण वो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और जानते हैं आरुभन क्या है कि हमारी युवा पीढ़ी पढ़ने और खेलने कूदने सब में ज्यादा ध्यान लगाती है, लेकिन कभी कभी उनका संगत किसी गलत लोगों से पड़ जाता है, तब वहाँ दिक्कत होती है, और गलत संगत के असर के कारण कभी कभी वो नशा पान के शिकार होने लगते हैं।
1: बिल्कुल पन्नू भाई, और आज है 26 जून, और 26 जून को हम लोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं।
0: जी, जी जी जी।
1: और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है पन्नू भाई, वो समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और एक ड्रग मुक्त वैश्विक समाज का निर्माण करना है।
0: जी, जी,
1: और
0: जी,
1: ये अभी आपने जो बोला, सच में हम लोग अभी जो युवा पीढ़ी है, चाहे वो हमारे राज्य का हो या दूसरे राज्यों का, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। और हमारे राज्य की सरकारें कुछ कदम उठाई, जैसे कि बिहार ड्राई स्टेट है, तो कुछ हद तक कुछ चीजों से तो बचा हुआ है अभी हम जो हमारे अभी नई युवा पीढ़ियां हैं, लेकिन फिर भी चोरी छिपे बहुत सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना कि अगर जनरेशन को सही करना है तो माइंडसेट को सही करना पड़ेगा, तो आज का दिन जो है इसी के प्रति जागरूकता फैलाने

0: है कि क्यों नहीं करना चाहिए और
1: जी
0: कैसे
1: जी जी
0: बचाएं।
1: जी जी नशा
0: बिल्कुल
1: जो है अरुबन न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है,
0: बिल्कुल
1: जिससे अवसाद और तनाव बढ़ता है। और आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य है नई चुनौतियों के खिलाफ समाज में हर वर्ग को जागरूक करना और एकजुट करना है। इस दिवस का मुख्य मकसद लोगों को नशे से दूर रखना है और नशा तस्करी पर लगाम कसना भी है, ताकि बच्चों और बड़ों का भविष्य उज्जवल और स्वर्णिम बने।
0: बिल्कुल। और आज के समय में नशीले पदार्थों का सबसे बड़ा शिकार, जैसे कि अभी आपने बोला, हमारे देश और दुनिया की युवा पीढ़ी हो रही है। युवा किसी भी देश के पन्नू भाई रीढ़ होते हैं, लेकिन आधुनिकता की दौर में मानसिक तनाव, पीयर प्रेशर जैसे दोस्तों के दबाव की वजह से और भ्रामक प्रचार के कारण बहुत जल्दी नशे के गिरफ्त में आ जाते हैं। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि नशीले पदार्थों के सेवन से नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियां युवाओं को घेर लेती है और यह हमें हर स्तर पर युवाओं को प्रभावित करता है। जैसे कि नशे की लत न केवल व्यक्ति की कार्य क्षमता को समाप्त करती है बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक रूप से कंगाल बना देती है।
1: जी, जी,
0: साथ ही जिसको नशे की लत लग गई वो नशे की लत को पूरा करने के लिए युवा अक्सर चोरी, लूटपाट, हिंसा जैसे गंभीर अपराधों का रास्ता चुन लेते हैं, जिससे कि सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है और वो हम लोग देखते रहते हैं आए दिन समाचार पत्रों में और दूसरे जरिए से हम लोग को पता चलता है कि कितनी जो अपराध है, विशेषतः जो छोटे कम उम्र के जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही सब एक वजह हो सकती है।
1: जी जी।
0: और एक अर्थशास्त्रीय और व्यापक दृष्टिकोण से भी देखें पन्नू भाई, तो नशीले पदार्थों का प्रसार जो है वो किसी भी देश के मानव संसाधन को सीधे तौर पर नष्ट करता है।
1: जी, जी।
0: युवा कार्यबल का नशे की गिरफ्त में आना देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और विकास दर को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
1: जी, जी।
0: और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भी जो गवर्नमेंट का जो खर्च है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सरकारों को नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों और पुनर्वास कार्यक्रमों पर भारी बजट खर्च करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं हर तरह से ना नशा सिर्फ एक परिवार को, एक समाज को नहीं, पूरे देश को खोखला बनाता है।
1: जी, जी।
0: और दूसरा, जो नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न ब्लैक मनी यानी कि काला धन है, वह देश की एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में भी होता है।
1: जी,
0: और पन्नू भाई, भारत में नशे की समस्या से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत सप्ताह 17 जून से आज यानी कि 26 जून तक का आयोजन किया गया है। इसके तहत कई अभिनव कदम उठाए गए हैं, जैसे कि नशा मुक्ति मित्र नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं ताकि आम लोग इस अभियान से सीधे जुड़ सकें। साथ ही स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में योग, खेलकूद, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर मेकिंग के जरिए युवाओं को से नो टू ड्रग्स यानी कि ड्रग्स को ना कहें का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर नशे के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है।
1: जी, जी।
0: और जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का एक यूएनओडीसी है जो आधुनिक मनोविज्ञान शोध और इस बात पे जोर देते हैं कि नशे के आदि व्यक्तियों को अपराधी ना माना जाए।
1: जी, जी, जी।
0: और क्योंकि वो एक मरीज होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, इसलिए उसको सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समाज और परिवार को नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को हीन भावना या कलंक से देखने की बजाय सहानुभूति और मानसिक संबल देना चाहिए।
1: मतलब उनको देखने का नजरिया जो है वो अच्छा होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र की जो वैश्विक थीम है उसमें विश्व दवा समस्या, निरंतर मुद्दे, नई चुनौतियां और अभिनव प्रतिक्रियाएं तय की गई हैं, जबकि भारत सरकार इसे नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान थीम के तहत मना रही है और यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देता है। तो वही जो आपने कहा, डिजिटल जागरूकता, नशा मुक्ति केंद्रों के विस्तार और सामाजिक समर्थन के जरिए युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना ही इस अभियान का, मतलब आज के दिन का मुख्य लक्ष्य।
0: बिल्कुल पन्नू भाई, और लत छुड़ाने के लिए जो है वैज्ञानिक और चिकित्सीय पद्धतियों का सहारा लेना चाहिए, और सजा देने की बजाय काउंसलिंग, योग, ध्यान और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि वे मुख्य धारा में लौट सकें। तो नशा, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस जो है वो केवल भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, यह हर नागरिक के लिए आत्मचिंतन और प्रतिज्ञा का दिन है। यदि हमें पन्नू भाई भारत को वैश्विक पटल पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो हमें अपने मानव संसाधन को स्वस्थ, सजग और व्यसन मुक्त बनाना होगा। तो आइए इस नशा मुक्ति दिवस 2026 पर हम सब यह मिलकर संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं को और अपने परिवार को नशे से दूर रखेंगे बल्कि समाज में इसके खिलाफ जागरूकता की अलग जगाएंगे। तो नशे को छोड़ो, जिंदगी से नाता जोड़ो, एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दो। ये नारा सही रहेगा क्या?
1: आप छोड़ देते हैं या आपके परिवार के लोग नशा नहीं करते हैं तो आप देखते हैं पूरा परिवार खुशहाल रहता है, सब लोग खुशी में जो है झूमते हैं या अपना जो भी काम करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं उस पर वो अमल करते हैं
0: और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिसका नशा किया जा सकता है।
1: जब आप खुश रहते हैं तो भगवान की प्रार्थना भी करते हैं कि मेरे घर में सारी हर समय ये खुशियां बरकरार रहे, देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो आइए हम लोग भी इस मौके पर एक सुंदर सा, एक बढ़िया सा देवी गीत सुन लेते हैं।
0: जी,
2: वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में पूरे विश्व के समक्ष पर्यावरण संकट एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए

0: बहुत ही सुंदर से देवी गीत सुनने के बाद एक बार फिर से सभी श्रोता भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत है।
1: जी जी जी
0: पन्नू
1: जी।
0: भाई, जो वृक्ष जो है ना, वो हमारा जीवन है,
1: जी,
0: वो तो ना लाइफ लाइन है। उसके
1: हुँ,
0: बिना अभी देख ही रहे हैं कि वृक्ष कटने से स्थिति क्या हो गई है,
1: जी,
0: कि
1: जी, जी,
0: जो
1: जी,
0: टेम्परेचर है, जो हम लोग का टेम्परेचर है, वो 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है,
1: जी,
0: इवन
1: जी,
0: भागलपुर का भी। तो वृक्ष का संरक्षण बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी हैं। हम लोग को थोड़े से अवेयरनेस के साथ, थोड़े से जागरूकता के साथ बस जुड़ना है और अपने तरफ से थोड़ी थोड़ी पहल करना है।
1: मतलब हम लोग जो पौधा लगाते हैं वो वृक्ष बनता है,
0: जी,
1: तो पौधा से वृक्ष बनने के लिए हमको उसको देखना पड़ता है, उसको उगाना पड़ता है, उसका संरक्षण करना पड़ता है।
0: जी
1: जी जी जी
0: तो
1: जी।
0: इसी से जुड़ी हुई एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनते हैं।
1: जी
0: वार्ता का विषय है वृक्ष संरक्षण योजना और वार्ताकार है रामेश्वर।
1: जी
0: तो सुनते हैं। यह
2: वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में पूरे विश्व के समक्ष पर्यावरण संकट एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की जरूरत है। वृक्षारोपण एवं उसका संरक्षण केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भी अत्यंत उपयोगी एवं अनिवार्य है। वृक्ष से प्रकृति का संतुलन, भोजन, ईंधन एवं पशुओं के लिए चारा की उपलब्धता होती है। इसके अतिरिक्त वृक्ष और हरियाली हमारे जीवन की ऊष्मा को भी बनाए रखता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण की रक्षा हेतु अधिकाधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए तथा इसके संरक्षण के कारगर उपाय किए जाएं। वर्तमान में बिहार राज्य में केवल 6.87% ही वन क्षेत्र है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना तक 33% वन क्षेत्र आच्छादित करने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण का प्रतिवर्ष 15 से 20% लक्ष्य निर्धारित करती है। इस लक्ष्य की पूर्ति में पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार पटना, कृषि विभाग बिहार पटना तथा ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना सहभागीदार हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में लक्ष्य निर्धारित कर वृक्ष के बीच से गाछी तैयार कर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तथा उसके संरक्षण में जिला वन पदाधिकारी से लेकर वनपाल तक लगे रहते हैं। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निजी व्यक्तियों को वृक्षारोपण के प्रति आकर्षण बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा मुफ्त में सीडलिंग का वितरण किया जाता है। कभी कभी वन विभाग द्वारा सीडलिंग को न्यूनतम मूल्य जैसे 25 पैसे 50 पैसे के मूल्य पर बिक्री किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक वानगी कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायतों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, जिससे रोजगार के जरूरतमंद वयस्क महिलाएं एवं मजदूरों को प्रतिवर्ष 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मुहैया कराया जाता है। वृक्षारोपण का कार्य निजी एवं लघु व सीमांत किसान की जमीन पर किया जाता है, लेकिन उसे अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा BPL वर्ग का होना चाहिए। इन पौधों पर स्वामित्व लाभार्थी का रहता है। प्राकृतिक आपदा से वृक्ष मर जाने के बाद पंचायतों द्वारा पुनः वृक्ष लगाने के लिए पैसा दिया जाता है। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक 200 पौधा के लिए आवश्यकता अनुसार पौधों की सिंचाई हेतु चापाकल दिया जाता है। 200 पौधा को सुरक्षित रखने, निकौनी करने एवं पानी पटाने का काम रोजगारी को दिया जाता है। 90% से अधिक पौधा जीवित रहने पर एक दिन की मजदूरी दी जाती है तथा 75 से 89% के बीच में पौधा जीवित रहने पर आधा दिन की मजदूरी रोजगारी को दी जाती है। ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा राज्यों के माध्यम से वृक्षारोपण एवं उसके संरक्षण हेतु हरियाली कार्यक्रम एवं जल छाजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन परियोजनाओं में बड़ी मात्रा में भारत सरकार द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के नहरों के दोनों किनारे बांध पर गहरी भूमि में, बंजर भूमि में वृक्षारोपण कराया जाता है। पौधों के संरक्षण के लिए मजदूर वन सेवक को ग्राम पंचायतों के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो पौधों को पानी पटाते हैं तथा जानवरों से सुरक्षा करते हैं। पौधों को गर्मी के मौसम में पानी देने के लिए छोटे छोटे तालाब, चेक डैम इत्यादि तैयार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत अपना योगदान 80% देती है और राज्य सरकार अपना योगदान 20% देती है। उसी तरह जल छाजन योजना के तहत भी भारत सरकार द्वारा 80% का सहयोग दिया जाता है और राज्य सरकार का योगदान 20% तक ही रहता है। यह दोनों योजना खासकर उन क्षेत्रों में काफ़ी सफल हुआ है जो जहाँ की भूमि पठारी है। पहाड़ी क्षेत्र में इन दोनों की योजना दोनों योजना के कार्यान्वयन से काफ़ी बड़े भूभाग में हरियाली सालों भर कायम रखी गई है तथा कृषि कार्य के द्वारा आसपास बसने वाले ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया कराया गया है। वन संरक्षण के बारे में अंत में यह कहा जा सकता है कि वन संरक्षण योजना वन को प्राकृतिक आपदाओं तथा मानवीय कृत्यों से वन को नाश होने से बचाना है। प्राकृतिक आपदा जैसे जंगल में आग लग जाना, बाढ़ व भूकंप से क्षति होना है, इन आपदाओं पर मानव का नियंत्रण नहीं है। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में इससे वन को काफी क्षति पहुंची है। जब अग्नि की विभीषिका आती है तो उसे बुझाने में महीनों महीने लग जाते हैं और फिर भी मानव अग्नि पे नियंत्रण नहीं कर पाता है। अग्नि से वन के साथ साथ जान माल की भी क्षति होती है। पुनः आजकल बढ़ रही जनसंख्या के भोजन को पूरा करने हेतु कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा वन भूमि को अंधाधुंध फैलाया जा रहा है और जंगल को काटा जा रहा है। दूसरी तरफ आज हमारे राज्य में और पूरे देश में शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण को बढ़ाने के लिए जंगलों को ही काटकर उन्हीं भूमि पर 2-4 मंजिला भवन बनाया जा रहा है और यही कारण है कि आज पर्यावरण असंतुलन सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है, जिसे हम लोग आजकल देश में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अंत में हम कहेंगे कि वन को बचाने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को काफ़ी कार्य करना चाहिए। ऐसे तो वन संरक्षण अधिनियम बने हुए हैं जो काफ़ी पुराना है। इस अधिनियम के द्वारा वन को क्षति पहुंचाने वालों के लिए आर्थिक दंड एवं कारावास का इसमें प्रावधान है। साथ ही वन संरक्षण में लगे कर्मियों के हितों की रक्षा भी इस अधिनियम के द्वारा की जाती है। उपसंहार यह है कि हम मानवों को वन का साथ चाहिए ताकि मानव के साथ साथ पशु पक्षियों तथा पर्यावरण को बचाया जा सके।
0: जी, तो
1: बहुत अच्छी जानकारी अभी हम लोगों को मिली।
0: बिल्कुल,
1: और वृक्ष संरक्षण बहुत जरूरी है
0: और जिससे कि हमारा जो पर्यावरण अभी बहुत ज़्यादा दूषित हो गया और इसकी वजह से हम लोग अभी इतने चीज़ झेल रहे हैं, बहुत गर्मी, बहुत ठंड या बारिश ना होना या बहुत होना, तो इन सब से अगर बचना है, आगे का अगर सही रखना है, अगले जनरेशन को सही चीज़ें देनी है, तो कहीं ना कहीं वृक्ष संरक्षण और वृक्ष लगाना दोनों बहुत ज़रूरी है।
1: जी,
0: इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और देवी गीत।
1: जी जी।

0: इस बहुत ही सुंदर से देवी गीत सुनने के बाद
1: जी,
0: पन्नू
1: जी,
0: भाई क्यों ना कुछ संदेशों को सुना जाए,
1: जी जी,
0: तो सुनते हैं इन संदेशों को
1: जी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
6: Ignoring frequent sneezing or blocked nose for too long, untreated allergies may lead to more serious health problems. Come, let's hear expert advice from city's renowned doctor.
7: Hello, I am Dr. Nitish, general surgeon from Munger. Allergies are not always just sneezing. If allergy problems are ignored for a long time, they can sometimes lead to asthma, sinus problems, ear infection or breathing trouble. Doctors call this the allergic march. That's why it is important to treat allergy early. Avoid triggers like dust and smoke and take proper medical advice. Don't ignore the sign. Healthy breathing start with the right care. Don't ignore allergy problems. Treat them the right way and the breathe comfortably.
6: Issued in public interest by Dr. Reddy's Laboratories. This information is not a substitute for medical advice. Please consult your doctor. While prepared with care, Dr. Reddy's assumes no liability for its content.
1: जी, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है।
0: जी, और अब थोड़ा सा मौसम सूचना अपने किसान भाइयों को दे देते हैं पन्नू भाई।
1: जी, जी, जी, जी।
0: तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में 26 से 28 जून के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी, 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है।
1: जी, जी।
0: अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है।
1: जी, जी।
0: सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60-70% तथा दोपहर में 25-30% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी हवा चलने का अनुमान है।
1: जी, जी।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात, तेज सतही हवाएं तथा झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है।
1: जी, जी, जी।
0: और आंधी, तेज हवाएं और वर्षा फसलों को नुकसान और फल फूल झरना, कीट रोग प्रकोप तथा सब्जियों बागवानी से फसलों को क्षति पहुंचा सकती है और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती है। तो ऐसे मौसम चेतावनियों को ध्यान से सुने और कहीं ना कहीं इसको कम करने का जो प्रभाव है वो कोशिश करें।
1: जी।
0: सामान्य सलाह यह है पन्नू भाई कि वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें, फसलों की नियमित निगरानी करें तथा उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग केवल मौसम साफ मौसम में ही करें। साथ ही खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं आवश्यक कृषि कार्य समय पर पूरा करें। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए किसान फसलों में नमी संरक्षण एवं जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखें। कुछ फसल विशिष्ट सलाह भी है पन्नू भाई, जैसे कि चावल के लिए है कि वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं तथा बीज स्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करें। विशेषकर ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा।
1: जी।
0: मक्का के लिए फसल विशिष्ट सलाह यह है कि खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3, गंगा 11 है। कुछ पशुपालन विशिष्ट सलाह भी है, जैसे गाय के लिए है कि गला घोटों एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की आवश्यकता है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराएं। नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पूर्व करीब 2 घंटा पानी में फुला लें एवं 50 ग्राम खनिज मिश्रण तथा 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव कुछ हैं, जैसे कि लू जिसे हम हीट वेव कहते हैं, इसके कारण फसलों में नमी की कमी, पौधों के मुरझाने तथा नवांकुरित पौधों की वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है। पशुओं में ताप, तनाव तथा पानी की आवश्यकता बढ़ सकती है। साथ ही आंधी, तेज हवाएं और वर्षा फसलों को नुकसान भी हो सकता है। फल फूल का झरना, कीट रोग प्रकोप तथा सब्जियों एवं बागवानी की फसलों को क्षति पहुँचा सकती है और पशुओं पर भी तनाव बढ़ाती है। तो इन चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं सावधान रहने की आवश्यकता है।
1: जी, जी, जी।
0: और सब थोड़ा सा बागवानी के लिए भी कुछ सलाह है, जैसे लीची की फल तुराई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई कर लें, जैसे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं एवं अन्य पौध अवशेषों को एकत्र कर हटा दें और इससे कीट एवं रोगों के प्रकोप में कमी आएगी तथा पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं
1: और हम लोग और एक गीत सुन लेते हैं, देखते हैं अब समय एक गीत का भी होता है तो एक तो गीत हम लोग सुन लेते हैं।
0: जी।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: जी, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और अरुबन, किसान भाई जो है मोटा अनाज की खेती बराबर करते हैं, क्या होता है कि अब समय की मांग हो गई है, जिस खेती के बारे में लोग भूलने लगे थे उसको फिर दोबारा जो है उस ओर हम लोग झुक रहे हैं। कारण क्या है कि समय नहीं कहते हैं कि लोग मोटा अनाज खाना छोड़ दिए थे तो परेशानी भी ज्यादा बढ़ गई थी, अब मोटा अनाज के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो मोटा अनाज में मड़ुआ और कोदो का प्रमुख स्थान होता है। तो मड़ुआ और कोदो की खेती किस प्रकार होती है और इसके बारे में आइए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार हैं डॉक्टर महेश कुमार सिंह
4: जी।
5: आज हम मड़ुआ की खेती के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। मड़ुआ, जिसको हम रागी या खेड़ी के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसको हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। परिचय एवं महत्व। बिहार में इसकी खेती ट्राइबल, देहरा तथा पर्वतीय क्षेत्रों के शुष्क भूमि में की जा रही है। लगभग 17,000 हेक्टेयर में उगाए जाने वाली मड़ुआ से 12,000 मीट्रिक टन अनाज उत्पादित होता है। इसके दानों का प्रयोग भोजन एवं औद्योगिक रूप में किया जा रहा है। औषधि गुणों वाली मड़ुआ में पोषक तत्वों तथा रेशों की मात्रा समुचित होती है, जिससे दानों को पीसकर आटा तैयार कर रोटी भी बनाई जाती है और दाने को उबालकर चावल की तरह भी खाया जाता है। मड़ुआ के दानों से उत्तम गुणों वाली शराब भी तैयार की जाती है। दक्षिण भारत में इससे केक, पुडिंग, मिठाइयाँ इत्यादि बनाया जाता है। इसके अंकुरित बीजों से माल्ट बनाते हैं, जिसे शिशु आहार तैयार किया जाता है। मड़ुआ मधुमेह रोगी के लिए भी उत्तम आहार है, क्योंकि इसमें चिपचिपापन वाला ग्लूटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका दाना मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है। इसके दाने में 10.5% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% वसा तथा 2.3% खनिज लवण होते हैं। मड़ुआ का दाना फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए एवं बी से भी परिपूर्ण होता है। इसके भूसे व हरे चारे का उपयोग पशुओं के आहार के रूप में भी किया जाता है। फसलोत्पादन की दृष्टि से मड़ुआ की खेती शुष्क क्षेत्रों में या जहां पर दूसरी मुख्य अन्न की फसलें सुगमतापूर्वक नहीं उगाई जा सकती, वहां पर भी मड़ुआ को सुगमतापूर्वक उगाया जा सकता है। आज के परिवेश में अगर हम देखें तो दिन पर दिन सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है और वर्षा की अनिश्चितता तथा नियमित वितरण न होने से भी अन्य फसलें जो है प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में, अर्थात सूखे और अकाल की स्थिति में, मड़ुआ को लगाकर वहाँ कुछ न कुछ उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सूखे व अकाल को मड़ुआ आसानी से सह लेता है। और तो और फसलों की अवधि भी बहुत कम होती है, 90 से 100 दिन में मड़ुआ तैयार हो जाती है तथा फसलों पर कीट पतंगों व बीमारियों का आक्रमण भी कम होता है। इस तरह से इसकी खेती से लाभ लिया जा सकता है। आजकल अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि पर दिखने लगा है। वर्षा की कमी तथा अनिश्चितता, तापमान का बढ़ना इत्यादि मृदा जल को भी प्रभावित कर चुके हैं, जिससे फसलोत्पादन के लिए जल की समस्या आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में मड़ुआ जैसे फसलों का महत्व बढ़ जाता है। अतः भविष्य में इन फसलों की खेती विस्तार करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। तथा खाद्यान्न आपूर्ति में बढ़ोतरी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पादन तकनीक की। सबसे पहले बीज की मात्रा। मड़ुआ की उचित खेती के लिए पौधों की उचित संख्या प्राप्त करना बहुत जरूरी होती है, जिसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। अर्थात 8 से 10 किलोग्राम बीज की बुआई एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। बुआई से पहले बीजोपचार किया जाता है। बीजोपचार के लिए कैप्टान, थीरम या भविष्टीन नामक रसायन की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किग्रा बीज की दर से अवश्य उपचारित करना चाहिए। बुआई का समय। मड़ुआ की उचित बुआई का समय मानसून के आगमन के समय शुरू होता है, अर्थात जितना जल्द हो सके मानसून के आने पर तत्काल मड़ुआ की खेती करना चाहिए, मड़ुआ की बुआई करना चाहिए। हालांकि इसकी बुआई जो किसान भाई अभी तक नहीं कर पाए हैं वो पूरे जुलाई महीने तक बुआई कर सकते हैं। दूसरा उचित समय होता है गर्मी में मड़ुआ की खेती करना। तो गर्मी में खेती करने के लिए फरवरी मार्च का महीना सर्वोत्तम होता है। फरवरी मार्च में इसकी बुआई करके किसान भाई गर्मी की फसल को उगा सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए मड़ुआ की सफल उत्पादन हेतु 2 से 3 जुताई करनी चाहिए तथा पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर देना चाहिए। बुआई का तरीका। मड़ुआ को हो सके तो लाइन में बोएं, और यदि लाइन में बोते हैं तो 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बनाकर उसमें बीज को गिराना चाहिए, और बीज को इस तरह से मेंटेन करें कि पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रहे, और मड़ुआ को ज़्यादा गहराई पर नहीं बोना चाहिए। इसको 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोना चाहिए, उससे ज़्यादा गहराई पर बोने से पौधों का जमाव नहीं होगा। अब बात आती है उन्नत प्रभेदों की। बिहार में अभी बहुत ज़्यादा प्रभेदों का टेस्ट नहीं किया गया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा टेस्ट की गई कुछ किस्में हैं, जैसे VR 708, VL 352, GPU 45, VL 348। ये सभी किस्में शीघ्र अवधि वाली किस्में हैं जो कि 90 से 95 दिन का समय लेती हैं और 18 से 20 कुंटल दाने प्रति हेक्टेयर इनसे प्राप्त हो जाती है, और साथ साथ 25 से 30 कुंटल भूसा या करवी का भी उत्पादन मिल जाता है। दूसरी प्रकार की किस्में हैं जो मध्यम व देर से पकने वाली किस्में हैं, जिसमें VL 149, GPU 28, GPU 67, इसको GPU 67 कहते हैं, RAU 8 और GPU 85। ये सभी किस्में मध्यम व देर से पकने वाली हैं जो लगभग 90 से 105 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं, और इनसे 22 से 25 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर मिल जाता है, साथ ही साथ 35 से 40 क्विंटल भूसा या सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। मड़ुआ की खेती ऐसे मृदा में की जाती है जहाँ की मृदा स्तर थोड़ा कम हो, मतलब लो फर्टाइल सॉइल में भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है, और खाद की मात्रा भी कम देनी होती है। इसके सफल उत्पादन हेतु 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। इस खाद को कैसे डालें? फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय देते हैं, तथा शेष बचा हुआ नाइट्रोजन की मात्रा को बुआई के लगभग 25 से 30 दिन बाद देते हैं, जिससे फसल को उपयुक्त नाइट्रोजन मिल सके। खरपतवार नियंत्रण। मुख्यतया मड़ुआ में खरपतवार की समस्या देखी गई है, जिसके नियंत्रण के लिए निकाई अति आवश्यक है। एक निकाई करें तथा निकाई के बाद 2,4-D नामक रसायन को की 500 ग्राम सक्रिय तत्व को लेकर 6 लीटर पानी में घोलकर बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करें, जिससे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जल प्रबंधन। खरीफ फसल में के रूप में लगाने पर इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा जल जमाव होने की स्थिति में जल निकास का उचित

प्रबंधन करना आवश्यक हो जाता है। अंतर्वर्ती फसलों के रूप में कैसे कैसे लिया जाए, मड़ुआ के साथ अंतर्वर्ती फसलें जैसे सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, ज्वार एवं मक्का ली जा सकती है। फसल चक्र, खरीफ मौसम में मड़ुआ के बाद जौ, चना, सरसों, मसूर, खेसारी, तीसी तथा मटर इत्यादि फसलों को लिया जा सकता है। उपज, इस प्रकार खेती करने पर शीघ्र पकने वाली किस्मों से 15 से 20 क्विंटल उपज दाने की मिल जाती है, जबकि मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों से 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ 35 से 40 क्विंटल सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है। अब हम परिचर्चा करेंगे कोदो की खेती के बारे में। कोदो जो कि शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, बिहार में इसकी खेती अभी ट्राइबल, दियरा तथा पर्वतीय क्षेत्रों के शुष्क भूमि में की जा सकती है। कोदो में पोषक तत्वों तथा रेशे की मात्रा संचित होती है। इसके दाने को उबालकर चावल की तरह भी खाया जाता है। इसमें 10% प्रोटीन, 65% कार्बोहाइड्रेट तथा 3.5% वसा होता है। इसके भूसे व हरे चारे का उपयोग पशुओं के आहार के रूप में भी किया जाता है, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि इसका भूसा या हरा चारा घोड़ों के लिए विषाक्त युक्त होता है, अतः घोड़ों के खिलाने के लिए इसके भूसे का प्रयोग कदापि न करें। मड़ुआ कोदो जो है सूखे व अकाल को आसानी से सहन कर लेती है। फसलों की अवधि भी मुख्य फसलों से कम अर्थात 80 से 95 दिन तक की होती है तथा इन फसलों पर कीट पतंगों व बीमारियों का आक्रमण बहुत कम होता है। आजकल वर्षा की कमी, अनिप्तता तथा तापमान का बढ़ना इत्यादि आम हो गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है और ये सभी स्थितियां मृदा जल को भी प्रभावित कर चुकी हैं, जिससे फसलोत्पादन के लिए जल की समस्या आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कोदो का महत्व बढ़ जाता है और निकट भविष्य में इन फसलों की, कोदो फसलों की खेती विस्तार करके जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है तथा खाद्यान्न आपूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कोदो के उत्पादन तकनीक के बारे में। सबसे पहले बीज की मात्रा, कोदो की अच्छी पैदावार के लिए पौधों की उचित संख्या होना अति आवश्यक है, जिसके लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजोपचार, कैप्टान, थीरम या बाबिस्टीन नामक रसायन की 2.5 ग्राम मात्रा लेकर प्रति किग्राम बीज की दर से अवश्य उपचारित करें। बुआई का समय, कोदो की बुआई मानसून के आगमन के तुरंत बाद अर्थात जून महीने में कर लेनी चाहिए। जो किसान भाई अभी तक नहीं कर पाए हैं वो तुरंत इसकी बुआई करके जुलाई तक समाप्त कर लें। खेत की तैयारी, कोदो का उत्पादन करने हेतु खेत की 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए तथा पटा लगाकर मिट्टी को भूरा कर लेना चाहिए। बुआई का तरीका, लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 60 सेंटीमीटर रखा जाए और बीज को 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। ध्यान रखें बीज को अधिक गहराई पर न बोएं, क्योंकि अधिक गहराई होने पर बीज का जमाव नहीं हो पाता है। उन्नत किस्में, कोदो की कुछ किस्में जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय में टेस्ट की गई हैं, जैसे JK 41, JK 65, JK 155, JK 349, GPUK इत्यादि किस्में हैं जो कि बिहार के लिए उपयुक्त हैं। खाद एवं उर्वरक, विभिन्न उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना आवश्यक होता है। जनरली 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय देवें तथा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के 25 दिन बाद खेत में व्यवहार करें। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार की समस्या आम बात है, जिसका नियंत्रण एक निकाई करके तथा निकाई के बाद 2,4-D नामक सक्रिय रसायन का 500 ग्राम सक्रिय तत्व को 600 लीटर पानी में घोल कर बुआई के 20 से 25 दिन बाद छिड़काव करने से खरपतवार कुछ हद तक नियंत्रित हो जाते हैं। जल प्रबंधन, ये सभी शुष्क फसलें हैं और बरसात ऋतु में उगाने पर लगातार बरसात होने से इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु आवश्यकता से ज़्यादा वर्षा होने पर या जल का जमाव होने पर जल निकास का उचित प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। अंतर्वर्ती फसलें, कोदो के साथ अंतर्वर्ती फसलें जैसे सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, ज्वार एवं मक्का ली जा सकती है। फसल चक्र,
खरीफ

0: मौसम में कोदो के बाद जौ, चना, मसूर, सरसों, खेसारी, तीसी तथा मटर इत्यादि फसलों को लगाया जा सकता है। उपज इस प्रकार उन्नत विभिन्न उन्नत किस्मों से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कोदो का दाना प्राप्त हो जाता है, साथ ही साथ 35 से 40 क्विंटल सूखा चारा भी प्राप्त हो जाता है।
1: जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर महेश कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी,
1: और
2: जी,
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक झूमर।
2: जी।

0: जी बहुत अच्छा गीत हम लोगों ने सुना।
1: जी
0: और आज तो देख रहे हैं कि मुसलमान भाइयों का पर्व मुहर्रम भी मनाया जा रहा है, काफ़ी
1: जी
0: संख्या में लोग देखे अपने श्रद्धा भाव से मुहर्रम को मना रहे थे।

0: को जो सलाह दी गई है, आशा है उस पर भी अमल करेंगे। और आरुभन, आज का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है
1: जी।
0: सबको पन्नू का नमस्कार
1: और सभी को आरु का भी नमस्कार।

ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब रांची से प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हुल दिवस पदयात्रा। संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISCE जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 46वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय झारखंड के किसानों की आशाओं और ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने लैब टू लैंड पर जोर देते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान की सफलता शोध पत्रों से नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव से मापी जानी चाहिए। राज्यपाल ने बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और लाख उत्पादन में संभावनाओं का जिक्र करते हुए छात्रों से जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने का आह्वान किया और विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती तक देश के अग्रणी कृषि संस्थानों में शामिल होगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में राज्य सरकार एक और कदम बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 29 जून को रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में आयोजित समारोह में 1042 चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय झारखंड

0: दौरे पर रहेंगे। रामगढ़ स्थित राधा गोविंद यूनिवर्सिटी में दोपहर 1 बजे आयोजित एक विशेष सेमिनार में वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सेमिनार का विषय आर्थिक असमानता और बेरोजगारी के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समग्र दृष्टिकोण रखा गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समावेशी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, परमाणु अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। झारखंड अधिविद परिषद जैक ने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी। परिषद के अनुसार ये सुविधा प्रारंभ से लेकर वर्ष 2024 तक आयोजित JAC की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगी। छात्र छात्राएं पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र, अंक पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र सहित अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि तथा अन्य स्वीकृत त्रुटियों के सुधार के लिए निर्धारित अवधि तक आवेदन कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका में आज आदिवासी कांग्रेस कमेटी की ओर से हुल दिवस पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रदीप बलमुचू सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर बलमुचू ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य संथाल समाज को हुल आंदोलन के इतिहास, उसके आदर्शों और सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों नमस्कार केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह और फुललन सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और विधिवत पूजन किया। पूजा के बाद श्री सिंह ने देश में अमन चैन, किसानों और मजदूरों की समृद्धि तथा बिहार झारखंड सहित पूरे देश की खुशहाली की कामना की। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी के पास देर रात एक सवारी वाहन और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को रिम्स रांची रेफर किया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम रही, जिसे प्रशासन के आश्वासन के बाद हटाया गया। आसू नेता पीयूष चौधरी ने कहा कि इस स्थान पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं।
1: लगातार तीसरा दिन हादसा हो रहा है। कल 4 लोग मरे थे और लगातार एक एक दिन छोड़ के यहाँ पे हादसा होता आ रहा है। आज हमेशा से हमने प्रशासन को, अपने यहाँ के बालों गांव के पब्लिक ने प्रशासन को कोऑपरेट किया है कि भाई रास्ता ना रोका जाए, निकला जाए। लेकिन
0: मुहर्रम के अवसर पर कल रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूसों के कारण यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देशानुसार केवल पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अत्यंत आवश्यक होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना देकर कराई जा सकेंगी। प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और नागरिकों से शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। झारखंड में आज मौसम आंशिक रूप से धूप वाला और उमस भरा रहा। हालांकि राजधानी रांची सहित कुछ इलाकों में आंधी के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 जून से पूरे झारखंड में मॉनसून फिर से पूरी तरह सक्रिय होने का पूर्वानुमान है, जिससे कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बिशप वेस्टकॉट गर्ल्स

0: स्कूल डोरंडा में आयोजित CISC जोनल कराटे चैंपियनशिप में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण सहित कुल 8 पदक जीते। लोरेटो कॉन्वेंट की मारिया लवलिन खेस, वृष्टि मोनिका क्रिकेटा और शाइनी शिमोना टुपो ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं बिशप वेस्टकॉट नामकुम की मिस्टी कुमारी और बिशप स्कूल बहुबाजार के प्रीति सोनी ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने कहा कि अब खिलाड़ियों को बिहार में होने वाली रीजनल कराटे प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कृषि अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाने पर दिया जोर। कहा, शोध की सफलता किसानों की आय बढ़ाने से तय होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने प्रमाण पत्रों में त्रुटि सुधार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई। वर्ष 2024 तक की सभी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। दुमका में कांग्रेस की ओर से निकाली गई हूल दिवस पद यात्रा। संथाल समाज को हूल आंदोलन के इतिहास, आदर्शों और अधिकारों से जोड़ने पर जोर। और CISC जोनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित जीते 8 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:11 हो चुके हैं। हमारा स्वास्थ्य इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर संतोष कुमार की वार्ता, तंबाकू सेवन का दुष्प्रभाव।
2: तंबाकू, जिसे हम बोलचाल की भाषा में खैनी इत्यादि के नामों से भी जानते हैं, के दुष्प्रभाव कई प्रकार से होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तंबाकू को खेती के द्वारा पौधों और पत्तियों से तैयार किया जाता है। तंबाकू के पौधे या पत्तियों में पाए जाने वाले कई कंपोनेंट या अवयव ऐसे पाए जाते हैं जो मानव शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। आजकल जैसा कि देखने को मिल रहा है, बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी तंबाकू का सेवन कई रूप में करते हैं, जो आगे चलकर बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होते हैं। साधारणतः तंबाकू इत्यादि का लत लग जाने पर इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तंबाकू उत्पादों में लगभग 50,000 जहरीले पदार्थ होते हैं, लेकिन मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक घटक निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और टान नाम के घटक होते हैं, जो मानव शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तंबाकू में मौजूद निकोटीन का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। निकोटीन समानतः नशे को पैदा करता है। निकोटीन वो कंपोनेंट है जो तंबाकू के सेवन करने वालों के व्यवहार को प्रभावित करता है। तंबाकू का इस्तेमाल कई रूप में किया जाता है। तंबाकू पीने वाले, जिसे हम धूम्रपान भी कहते हैं, धूम्रपान करने के कारण निकोटीन बहुत तेज़ी से मस्तिष्क में पहुंचता है, जो मस्तिष्क के लिए काफ़ी घातक होते हैं। धीरे धीरे निकोटीन अधिकतर पूरे शरीर और मांसपेशियों में वितरित हो जाते हैं, जो मानव संरचना के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। दूसरा प्रमुख कंपोनेंट जो तंबाकू में पाया जाता है, वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में होकर गुजरने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, जिसके कारण शरीर में उचित मात्रा में ऑक्सीजन का संचार नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण शरीर में कमजोरी या थकान की स्थिति बनी रहती है। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तथा कभी कभी बेहोशी की हालत उत्पन्न हो जाती है। टार, जो तंबाकू का एक प्रमुख अवयव है, ये एक चिपचिपा अवशेष

होता है जिसमें बेंजीनोपाइन नामक तत्व पाए जाते हैं। बेंजीनोपाइरिन एक घातक कैंसर होने वाले कारण एजेंटों के नाम से भी जाना जाता है। इन सब में निकोटीन का एक प्रमुख रोल होता है। निकोटीन की संरचना शारीरिक न्यूरोट्रांसमीटर के समान होती है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को हस्तांतरित करता है। जैसा कि देखा जाता है, तंबाकू का सेवन विभिन्न तरह से किया जाता है। सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, शीशा इत्यादि के रूप में तंबाकू का सेवन होता है। बहुत से लोग तंबाकू को चबाकर इसका सेवन करते हैं। तंबाकू के सेवन करने वालों पर घातक परिणाम होते हैं। आर्थिक हानि, स्वास्थ्यगत हानि तथा तंबाकू सेवन से पर्यावरण की हानि भी होती है। तंबाकू के ज़्यादा सेवन करने से मुंह में कैंसर के शुरुआती परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अत्यधिक सेवन करने से मसूड़े एवं ओट के रंगों में परिवर्तन हो जाते हैं। नमक या तीखा पदार्थ खाने में जलन होती हैं। तंबाकू के अत्यधिक सेवन के कारण मुंह के अंदर उजले रंग का धब्बा बन जाता है, जिसके कारण मुंह खोलने में असुविधा होती है। कभी-कभी उजले धब्बे, जिसे हम सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी कहते हैं, के कारण पूरा मुंह ही नहीं खुल पाता है। ऐसी स्थिति में सर्जरी द्वारा ही मुंह खोल पाना संभव है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस तंबाकू सेवन के द्वारा होने वाली एक जटिल बीमारी है। तंबाकू सेवन के कारण अक्सर मुंह में छाले पड़ने की संभावना बनी रहती है। छाले पड़ने के कारण कुछ भी खाने पीने में जलन महसूस होता है। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है, तंबाकू के कारण जो छाले पड़ते हैं वो काफ़ी दिनों तक ठीक नहीं होते और एक बड़े बीमारी का रूप ले लेते हैं। तंबाकू सेवन के कारण मुंह से बदबू का आना एक आम बात है। तंबाकू सेवन के कारण कभी-कभी मुंह से बदबू के साथ-साथ मसूड़ों से खून भी आने लगता है, जो पायरिया के रूप में विकसित हो जाता है। तंबाकू सेवन के कारण उजला धब्बा मुंह के अंदर, ओठ, जी, तालू कहीं भी हो सकते हैं। इन सभी लक्षणों के दिखने पर तुरंत तंबाकू का सेवन बंद कर देना चाहिए तथा चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। तंबाकू के अत्यधिक सेवन करने के कारण हृदय संबंधी बीमारी भी होने की संभावना रहती है। आजकल तंबाकू सेवन एक तेजी से बढ़ती हुई आदत है। इसे सभी उम्र के लोग, चाहे वो टीन एजर्स हों, युवा या प्रौढ़ हों, बड़े शौक से इसका सेवन करते हैं। कुछ लोग इसे तनाव कम करने के लिए तो कुछ लोग शौक से इसका सेवन करते हैं। दोनों ही स्थिति में शरीर के लिए ये घातक सिद्ध होते हैं। तंबाकू के सेवन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लगभग 28 प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति तंबाकू सेवन के कारण होते हैं। तंबाकू सेवन के कारण मुंह एवं शरीर के अन्य भागों में भी काफ़ी खतरनाक परिणाम पड़ता है। तंबाकू सेवन के कारण दांतों का समय से पहले गिरना शुरू हो जाता है। इसके कारण मसूड़ों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तंबाकू सेवन के कारण दांतों का घिसना भी शुरू हो जाता है, जिसे एटिटेट टेथ कहते हैं। अत्यधिक सेवन से मसूड़ा का रंग परिवर्तित हो जाता है। कभी-कभी ओठों का रंग में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। मुंह के अंदर छाले पड़ने की संभावना बनी रहती है, जिसे माउथ अल्सर कहते हैं। अत्यधिक सेवन से गले में या गले के अंदर छाले हो सकते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले अवयव निकोटीन की वजह से लोगों को इसकी आदत हो जाती है। लगभग 42% लोगों को तंबाकू खाने की आदत है। सभी जगह इसका सेवन किया जाता है। साधारणतः तंबाकू का सेवन दो तरह से होता है, जिसे हम स्मोकिंग टोबैको और स्मोकलेस टोबैको कहते हैं। तंबाकू के सेवन करने से आसपास के लोगों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखा जाता है। जिसे तंबाकू चबाने की आदत होती है, उस परिस्थिति में तंबाकू को धीरे धीरे अवशोषण होता है और यह ज़्यादा देर तक ब्लड स्ट्रीम में रहता है। यदि कुछ लोग इसे छोड़ना चाहते हैं, तो आजकल बहुत से

0: भी खुल गए हैं। सरकार द्वारा भी बहुत सी संस्थानें खोली गई हैं जहां पहुंचकर चिकित्सीय परामर्श लेकर इसे छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा निकोटीन मेडिकली ऐसे रूप में भी उपलब्ध है जो कम हानिकारक है तथा यह तंबाकू छोड़ने में मदद करते हैं। बाजार में यह निकोटीन गम, निकोटीन पैचेस इत्यादि नामों से जाना जाता है। बाजार में कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जो तंबाकू छोड़ने में मदद करती हैं। तंबाकू के सेवन से फेफड़े, लीवर, अग्नाशय, गुर्दा आदि जगहों पर कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। धुआं रहित तंबाकू के इस्तेमाल से मुंह के कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तंबाकू को हम एक प्रकार से धीमा जहर भी कह सकते हैं। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। आज के दौर में युवा वर्ग धूम्रपान व तंबाकू सेवन में सबसे आगे हैं। युवा जो कि अशिक्षित होने के कारण या फिर फैशन शौक या अपने आप को आधुनिक दर्शाने के लिए सिगरेट या तंबाकू का सेवन आरंभ कर देते हैं और यह उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच की होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग युवावस्था में ही धूम्रपान करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आप धूम्रपान के आदि हैं तो धीरे धीरे इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी बच्चों के सामने धूम्रपान या गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसे देखकर वह भी इस लत के शिकार हो सकते हैं। युवाओं को तंबाकू उत्पाद से दूर रहना चाहिए। ग्राहक यदि नाबालिग है तो दुकानदार तंबाकू व उससे बने उत्पाद कतई ना दें। समय समय पर इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को बताना चाहिए, जिससे अगर युवा चोरी छिपे इसका सेवन करें तो इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानकर इस लत को छोड़ने की कोशिश करें। तंबाकू का सेवन आजकल महिलाओं और युवतियां भी करने लगी हैं। महिलाओं में तंबाकू के सेवन से गर्भावस्था के दौरान रक्त स्राव का खतरा बना रहता है। महिलाओं में गर्भपात होने की स्थिति भी तंबाकू के कारण बनी रहती है। अत्यधिक सेवन करने से बच्चे का समय से पहले जन्म होने की संभावना होती है। महिलाओं में धूम्रपान के कारण बच्चों में जन्मजात विकृतियां जैसे कि अंदर की ओर मुड़ी हुई पैर की उंगलियां आदि होने का खतरा रहता है। महिलाओं के तंबाकू सेवन के कारण बच्चों पर उच्च रक्तचाप या उनके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अतः जहां तक हो सके महिलाओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। कम उम्र की युवतियाँ पर तंबाकू के प्रभाव के कारण उनके मासिक धर्म होने पर खतरा बना रहता है। तंबाकू का सेवन कर आम लोग पैसा के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी खो रहे हैं। तंबाकू सेवन के कारण मुख के अंदर कैंसर होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, खासकर उन्हें जो ज़्यादा देर तक गुटखा या खैनी को अपने मुख के अंदर रखते हैं। गुटके इत्यादि का सेवन लंबे समय तक करते हैं। कोशिश यह करनी चाहिए कि सोने से पहले खैनी या गुटका मुख में नहीं हो। एक कोशिश यह भी करनी चाहिए कि सोने से पहले अच्छी तरह मुख को साफ कर लें तथा किसी माउथ वॉश का इस्तेमाल जरूर करें। तंबाकू सेवन की वजह से अगर लगे कि मुख के अंदर कोई बीमारी पनप रही है या होने की संभावना है तो तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। तंबाकू सेवन दीर्घ निश्चय या डॉक्टरी सलाह से छोड़ा जा सकता है। यह सोच लेना कि तंबाकू का सेवन नहीं छूटता है यह बिल्कुल गलत है। आजकल बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे शहरों में कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो तंबाकू उन्मूलन पर काम करते हैं। तंबाकू का सेवन किसी भी अवस्था या उम्र पर उचित नहीं है। तंबाकू को ज़्यादा देर तक मुख में रखना कैंसर जैसे रोगों के होने की संभावना बढ़ा देती है।
1: तंबाकू सेवन का दुष्प्रभाव। हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में अभी आपने डॉक्टर संतोष कुमार की ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुनी। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज रात्रि

9:30 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल का समन्वित अंक, और रात्रि 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा पसंद आपकी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने को हैं। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर माह के अंतिम रविवार को आपकी ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
1: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
0: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
1: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
0: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
1: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप

राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आज पटना लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों में इस वर्ष 31 दिसम्बर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान नव सृजित 211 सरकारी डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की केंद्रीकृत नियुक्ति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, शोध एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। बैठक में विद्यार्थियों की लंबित डिग्रियों के वितरण कार्य को 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अपराधियों के साथ मिलीभगत और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में

0: विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित उपाधीक्षक पर जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप है। जेल अधीक्षक की जांच में यह भी सामने आया है कि उपाधीक्षक की ओर से बंदियों के परिजनों से पैसे लेकर उनकी ओर से लाई गई सामग्री को बिना सुरक्षा जाँच के जेल परिसर में पहुंचाया जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित अनियमितता के मामले में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे सरकार उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी।
1: मैं सबके आस्था का

0: जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भरत भूषण तिवारी कथित मुठभेड़ मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। श्री झा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया, कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा करके मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं, और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया तो उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये एनडीए सरकार की प्राथमिकता नंबर वन है।
0: राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के 90 अंचलाधिकारियों का एक साथ तबादला कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह स्थानांतरण विभागीय वार्षिक तबादला नीति के तहत किया गया है। इससे पहले विभाग ने 60 अंचलाधिकारियों का तबादला किया था। इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य राजस्व एवं भूमि प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में विभागीय स्तर पर जून माह में वार्षिक तबादलों की व्यवस्था लागू की गई थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार संवेदनशील है। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार ने स्थानांतरण पोर्टल लॉन्च किया है, इससे शिक्षकों का स्थानांतरण सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगा।
2: शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे हमने बिहार कैबिनेट से पास करा करके और उनके स्थानांतरण नीति को सरल कर दिया है, और स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से होंगे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो अपना आवेदन जब पोर्टल पर करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके ट्रांसफर हो जाएंगे। महिलाओं को उनके पंचायत के बगल के पंचायत में, पुरुषों को उनके ब्लॉक के बगल के ब्लॉक में, ये स्थानांतरण करने की हमने योजना बनाई।
0: जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद श्री यादव ने कहा कि एनडीए सरकार न्याय के साथ, विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी कथित मुठभेड़ मामले में सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। ग्रामीण विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। श्री कुमार ने नालंदा जिले के नूरसराय में किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा और खेती अधिक लाभदायक बनेगी। उन्होंने किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए भी प्रेरित किया। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है। हजरत इमाम हुसैन और 72 साथियों की शहादत की याद में योम ए आशूरा मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न भागों में ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने प्रदेशवासियों से पारंपरिक सद्भाव, शांति और भाईचारे के माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत हमें इंसानियत, त्याग और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इधर मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को जुलूस मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद, दानापुर और पटना सिटी समेत 351 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है। पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, मधुबनी और पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवहर में सबसे अधिक 112.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं पश्चिम चंपारण के बगहा में 95 मिलीमीटर, हरलाखी में 68 मिलीमीटर और सुनवर्सा में 49 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कहा कि मानसून की उत्तरी सीमा अभी मोतिहारी से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों में बिहार के शेष भागों में मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में आज पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने 17 ओवरों में 5 विकेट खोकर 164 रन बना लिए हैं। भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का दूसरा और अंतिम T20 मैच रविवार को खेला जाएगा। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद ने मॉडल सदर अस्पताल में बन रहे ICU का निरीक्षण किया। 4 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक ICU को 30 जून तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अररिया जिले के जौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने 340 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सच्चिदानंद सुमन ने वीरपुर अनुमंडल के 14 और सुपौल अनुमंडल के 15 नव नियुक्त PDS डीलरों को लाइसेंस प्रदान किया। रोहतास के जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के 7,000 से अधिक कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को निःशुल्क लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के परसोना गांव में आंधी और बारिश के दौरान वज्रपात से कई घरों में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नशे का कारोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती, नशे के खिलाफ सभी से एकजुट होने की अपील की। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में 31 दिसंबर तक समर्थ पोर्टल के सभी मॉड्यूल लागू होंगे। उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार का बड़ा कदम। गया जी केंद्रीय कारा के उपाधीक्षक सुदर्शन प्रसाद सिंह को अनियमितता और लापरवाही के आरोप में किया गया निलंबित। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सीमांचल सहित प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले के हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: बांका जिले में आज मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडाधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। विकसित भारत योजना और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी। के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की गई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी अंकुर अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए जिला एवं प्रखंड स्तर पर कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण तथा योजना के 100% क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत बीते दिनों बांका जिले में आयोजित रोजगार सह कौशल मेले में जिले के विभिन्न प्रखंडों से कुल 442 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान 428 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया तथा विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के बाद 14 अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन किया गया। जिला प्रशासन ने इस आयोजन को युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। आगामी 28 जून को

0: केंद्र अधीक्षकों तथा पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। बांका जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में लगातार सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना तथा उनकी शिकायतों के समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन ने कहा कि सहयोग शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें पारदर्शी और त्वरित सेवा मिल सके।
1: और अब प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल, इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लखीसराय जिले में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का कार्य शुरू हो गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में अधिकारियों ने योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाने पर जोर दिया। जिले के खिलाड़ियों ने बीते दिनों राज्य टाइकांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर पूरे बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अब राष्ट्र

आगमन से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। खैर, संभावित बाढ़ और सुखाड़ से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में पिपरिया और सुनहरा सहित

0: किया गया। इस जॉब कैंप में 36 युवाओं ने भाग लिया, जिनमें से 13 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे बांको और लखीसराय जिले की हलचल।
2: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। 7:52 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज सुरलहरी के कलाकार हैं डॉक्टर अजय राय। कार्यक्रम में इनसे सुनते हैं गोपाल सिंह नेपाली की रचना, गंगा की धार जवानी, मत रोक डगर अज्ञानी।

सुरलहरी कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर अजय राय को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाज़ों में है। फिल्म है माई नेम इज खान।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आपने फिल्म कच्चे धागे की कव्वाली सुनी नुसरत फ़तेह अली ख़ान और साथियों की आवाज़ों में। और आइए अब सुनते हैं फिज़ा फिल्म का गीत कादर गुलाम मुस्तफ़ा और साथियों से।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: गैंगस्टर, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जुबिन गर्ग की आवाज में।

जोधा अकबर फिल्म के इसी गाने के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा की 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह

0: खान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशु के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई।

भारत ने वायुसेना के दो जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस में रौनक

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on 11th BRICS Energy Ministers Meeting, Strengthening Cooperation in Energy Sector. The participants are Atul Aneja, Strategic Analyst, and Sonu Sood, Anchor.
1: India, during its chairship of the International Grouping of 11 Emerging Economies, BRICS, hosted a two-day meeting of the energy ministers of the BRICS member countries in Gurugram, which concluded today with the adoption of a joint communique. Guided by the energy track theme Sarvesham Urjam, the discussions focused on three priority areas: energy security, sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. To discuss the significance of this meeting and the major outcomes, we have with us strategic analyst Atul Aneja. Atulji, warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: Atulji, this communique which has come out of the 11th BRICS Energy Ministers meeting, which is a collective vision and consensus of BRICS countries on strengthening cooperation in the areas of energy security, sustainability, innovation, resilient infrastructure and capacity building. How do you see this, and what do you think are the major steps which are going to lead us in this direction?
2: Sonji, this particular meeting has taken place in an important context. And the context was the war, which hopefully has stopped in Iran.
1: Yes.
2: Because that showed the vulnerability to our energy security if we base ourselves only on hydrocarbons, oil and gas, that is, and that to source majorly from the Persian Gulf countries. So that is a broader backdrop which has informed this particular conference. Because if you are vulnerable, then you need...
3: आया वो पहले से ज्यादा 7.5 शिद्दत का था। ये दोनों जलजले जमीनी सतह से नजदीक थे, जिनकी वजह से तबाही और ज्यादा शदीद हुई है। मुल्क उबूरी सदर डेलसी रोड्रिगेज ने हंगामी हालात का ऐलान किया है। बहुत से ममालिक ने बचाव की कोशिशों में मदद करने की पेशकश की है। उबूरी सदर रोड्रिगेज ने जलजलों के बाद भारत के इत्तेहाद का ये कहते हुए एतराफ किया है कि ये मुश्किल औकात में भारत और वेनेजुएला के दरमियान के कस्बे के ऐन मुताबिक। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने तहज्जुद का इजहार किया है। नेज जलजले से होने वाले शदीद राहत की कार्रवाइयों में इमदाद देने की भारतीय ख्वाहिश का इजहार किया है। जनाब मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने बैनुल अक्वामी इमदाद के जज्बे को तस्लीम किया और वेनेजुएला के साथ किए जाने वाले इत्तेहाद को सराहा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्तात का ऐलान किया, जिसके तहत भारतीय फजाइया के दो C-17 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना हुए। ये तैयारे जलजले के बाद राहत रसानी में मदद के लिए जरूरी अशिया लेकर गए हैं। हिस्पानवी जबान में अमिस्तात का मतलब है दोस्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस इमदाद में भारतीय फौज का एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट और 35 टन से ज्यादा इमदादी अशिया, दवाएं और तिब्बी आलात भी हैं, जिसमें दो क्यूब्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इन मुश्किल हालात में वेनेजुएला की हुकूमत और वहां की अवाम की मदद के लिए अहदबंद है। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के सहाफ़ियों के ग्रुप से बातचीत की। वज़ीर मौसूफ ने उनसे भारत में रुनुमा हो रही काया पलट तब्दीलियों, दुनिया की मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल, नेज़ भारत और यूरोप के दरमियान बढ़ते बाहमी इतफाक के सिलसिले में बात की। डॉक्टर जयशंकर ने यकीन दिलाया कि भारत में उनकी मुलाकातों और सफर से भारत नेज़ भारत यूरोप शराकतदारी के इम्कान के ताल्लुक से उनकी मालूमात में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका और ईरान ने दोनों मुल्कों के फौजी नुमाइंदगान पर मुश्तमिल तनाज़ात के तस्फीये का एक बराह रास्त चैनल कायम करने से इत्तेफाक किया है। इस बंदोबस्त में ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC और कतर के शहर दोहा में तैनात अमरीकी फौज की सेंट्रल कमान सेंट कॉम से नुमाइंदगान शामिल होंगे। जनाब वेंस ने एक ब्रिटिश न्यूज साइट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान और अमरीका ने किसी और जंग के खतरे को कम करने की गरज से ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी

भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। उनका हर रंग हर रूप रचनात्मकता के सौंदर्य में ढलकर श्रोता ये के मन के मौसम को भी कुछ क्षणों के लिए ठंडी छांव में शांति देगा। श्रोताओं साहित्य करते हैं आगे अगले खंड सोचिए की ओर। श्रोताओं जिस प्रकार ऋतुएं प्रकृति के बदलते रूप का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है उसी प्रकार पर्यावरण की जीवन रेखा है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो ये अनुपम सौंदर्य भी रहेगा। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरे भरे वृक्ष हमें प्रकृति से प्राप्त अनमोल है। जरा सोचिए ये सब ना हो तो क्या हमारा अस्तित्व रहेगा? हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण आज पर्यावरण गंभीर संकट का सामना कर रहा है। अनियमित परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल संकट और प्राकृतिक आपदाएं इसकी स्पष्ट चेतावनी है। समझा तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित प्रदूषित वातावरण विरासत में मिलेगा। यहाँ पर चलते हुए हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। साहित्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता है और संवेदनाएं प्राप्त करता है। हमारी कविताओं, कहानियों और गीतों में नदियों की कलकल, पंछियों का कलरव, वृक्षों की हरियाली और ऋतुओं का सौंदर्य जीवंत रूप से दिखाई देता है। यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी साहित्य की सुंदर प्रेरणा जीवित रहेगी। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल प्रकृति का ही नहीं बल्कि साहित्य और क्योंकि जब प्रकृति मुस्कुराती है वहीं साहित्य गुनगुनाता है। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ यात्रा में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं उनकी

सबसे पहले एक कविता जिसका शीर्षक है बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, धारा से लेकर गगन तक बारिशों की लय, बरसना भी है सुनिश्चित भींगना भी तय, तम तमाया तमस है नव गर्जना का भय, आकाश में फिर घिरे घन पागल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। दूसरा अंतरा, धारा कब से कर रही थी नित नव मनोहर, जेठ आते ही औचक आषाढ़, प्राणियों के प्राण प्रतिपल मांगते जलधार, छा गए आकाश में फिर रंग नव श्यामल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, वेदना के गीत गाते प्राण के आधार, गुरु पूनम के दिवस में दे रहे बौछार, वज्रधर उद्दंड नायक प्रलय के अवतार, आकाश में फिर बज रहा मादल, आ गए आकाश में फिर है। आकाश में जिस जिस रूप में मुझे दिखाई पड़ा उसकी अभिव्यक्ति है। कौन इन सौ बार बैग में भरे रसधार, कूचियों से नील नभ पर रंग देता झार, गा गए आकाश में फिर घन घनन काजल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर फिरे बादल। मीत देखे मैंने विप्लवी के रूप, कभी बादलों का रूप बहुत विप्लवी होता है, विद्रोही। मीत देखे आज मैंने विप्लवी के रूप, जो चमकती सी लगी थी स्वर्ण वर्णा धूप, धूप में बिल्कुल अनोखा दुखों का कूप, खुल गया नभ नील का था बंद जो सांकल, आकाश में फिर सिर फिरे बादल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। अंतिम बंद है, कृषक मन में हर्ष वह दे गया नवगीत, का वह दे गया नवगीत, कभी लगता है विकट वह कभी लगता मी, कभी लगता है विकलसा देख जग की रीत, प्रेमियों के नेत्र में भरकर विरह का जल, आ गए आकाश में फिर सिर फिरे बादल। की विसंगतियों और विडंबनाओं का विश्लेषण, गीत का शीर्षक है आदमी।

खो गया है भीड़ में जो आदमी, बंधु मैं उस मौन का पर्याय हूँ, तुम्हारे बीच की विडंबना आज खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगला बंध, संबंध का हर बंध क्रंदन।

अगला बंद है, ठहरी ठिठकी सहमी सी यह चांदनी, कुछ अधूरे प्रश्न हमसे पूछता है, हर कमल पर यंत्र युग की यंत्रणा, आज के मन को श्रद्धा सूझती है। ठहरी

0: जो खुद से मांगता मैं न्याय हूँ। अगली रचना धान रोपती बेटियां। धान रोपती बेटियां बेटियों के श्रम से जुड़ा हुआ सौंदर्य, बेटियां आगे बढ़े अच्छा करे, इसमें बेटियों के श्रम का सौंदर्य सामने लाने का प्रयास किया गया है विनम्रतापूर्वक।
1: धान रोपती बेटियां सुन

अगला बंद देखे, बेटों से पग दो पग आगे, मुस्काती सब दुख भागे। बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाज लस, लिए जगत की अम्मा लागे। जगत की अम्मा जगदम्बा। बेटों से पग दो पग आगे, जब मुस्काती सब दुख भागे। खुरपी कलम समझ लाज लस, लिए जगत की अम्मा लागे। अगहन में

कभी लगे ये गुड़ की घानी, कभी खुशी चकलेटियां, धान रोपती बेटियां, सुंदरियां सलेटियां। अंतिम बात है, बेटी तुम सूरज बन चमको, चंद्र सम नभ में दम को। बेटी तुम सूरज बन चमको, चंद्र सम नभ में दम को। लाज मान मर्यादा समझो, हर सिंगार सम

0: बेटियां धान रोपती बेटियां सुंदरिया सलेटिया। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। जीवन में हमें संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी हमारे भीतर एक लड़ाई चलती है, तो हमारे भीतर के अंतर्द्वंद को छंद द्वारा अभिव्यक्त करने का मैंने प्रयास किया है आपके समक्ष। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। माया करनित नौ चतुराई छल रही। होना था मुझको भी सोना लेकिन मुश्किल ऐसा होना। सपनों की नौ चित्र कथानित जल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। अच्छे दिन आने वाले थे, दुख के दिन जाने वाले थे। अरमानों की सांझ सुरमई ढल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही। लेकिन निराश नहीं होना है, जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। आशाओं को हम हेरेंगे, नया तराना फिर छेड़ेंगे। आशाओं को हम हेरेंगे, नया तराना फिर छेड़ेंगे। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही। कोशिश ही तो हर विपदा का हल रही। खुद के भीतर एक लड़ाई चल रही।
1: भगवत जा अन्मेष जी से अभी आप सुन रहे थे उनकी स्वरचित कविताएं। और अब इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुनते हैं उनकी स्वरचित कहानी सब दिन होत न एक समान।
2: किसी गांव में संतोष नामक एक निर्धन व्यक्ति रहता था। स्वभाव से सीधा सादा, उसके काम के अनुरूप उसकी प्रकृति और आचरण छल कपट से दूर अपनी पत्नी ललिता और तीन बच्चे, दो बेटियां और एक बेटा के साथ रहता था। वह अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिताजी ने दोनों बड़े भाइयों को अच्छी शिक्षा दीक्षा पढ़ा लिखा कर ठाट वाट की नौकरी दिलवा दी थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण संतोष को उच्च शिक्षा व पढ़ाई लिखाई न करवाई गई। जैसे तैसे अपनी सूझबूझ बलबूते व कठिन परिश्रम से 10वीं अर्थात मैट्रिक तथा शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग जिला के महाविद्यालय से दक्षता प्राप्त तो कर ली, परंतु आगे की पढ़ाई से वह वंचित रह गया। घर परिवार में सरल व सहज होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां इसी के सिर पर लाद व मर दिया गया। तीनों भाइयों के परिवार के सदस्यों का सारा बोझ इसके ही सिर पर आन पड़ा। अपने जीवन काल में न ही इसके पिता इसके साथ न्याय कर पाए और ही नियति इसको न्यायोचित अधिकार व सुख दिला पाई। अब मरता करता भी तो क्या करता। आए वक्त संतोष की जिंदगी उहापोह व उथल पुथल सी गुजर बसर होने लगी। संतोष परिवार के बोझ से दिन ब दिन धसता ही चला जा रहा था, मगर फिर भी उसके ललाट और चेहरे पर चिंता, झिझक एवं परेशानियों की लकीर व रेखाएं कंचित मात्र भी नहीं दिखाई पड़ती थी। वह दुर्दिन से दुर्दिन परिस्थितियों में भी व्यथित व दुखित न दिखता था और उसके पीठ पीछे की सकारात्मक ऊर्जा और मनोबल के रूप में इसकी धर्मपत्नी ललिता थी। ललिता चंचल स्वभाव, कद पूरे 5 फुट, गौरवर्ण, फटे पुराने चिथड़े परिधान, उलझे केश, नग्न पैर, तीखे स्वर, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पाई पाई जोड़कर हिसाब रखने वाली, कमासुत, अहर्निश, रात दिन देह तोड़ मेहनतकश औरत, कदापि थकती नहीं थी, नित्य निरंतर कामों में लगी रहती थी। स्वभाव व आचरण से अत्यंत सरल, सहज, शालीन स्वभाव, पतिव्रता नारी होने के साथ साथ उसे ईश्वर में अटूट विश्वास और जुड़ाव था। घर परिवार में साक्षात लक्ष्मी की मूर्त थी वह। शायद यही कारण था कि संतोष को मानसिक रूप से दुखित व व्यथित नहीं होने देती थी। संबल वन सदा सहाय रहती थी, संतोष का मनोबल सतत बढ़ाती ही रहती थी, अतिशय विपदा में भी उसे समय समर पर ढांढस बंधाती रहती थी। निश्चल, निष्कपट, सीधा, सरल व्यवहार के कारण ही संयुक्त परिवार के सभी लोग संतोष से उसके बीवी बच्चों को देखना पसंद नहीं करते थे। ऊपर से उन दोनों के सादगीपन और भोलापन के कारण उनका फायदा उठाते थे। घर का कोई भी सदस्य संतोष के परिवार से खुश नहीं रहता था, परंतु घर का चाहे कोई भी काज हो, बस ललिता को ही आवाज लगाई देते। घर के लोग एक गिलास पानी तक ललिता से ही मांगते फिरते थे। ललिता के साथ मानो नौकरानी सा व्यवहार करते थे। विकट

0: स्थिति में जीवन यापन करने वाली अडिग नारियल की तरह ऊपर से सख्त अंदर से कोमल ललिता ना तो कभी किसी से झुंझलाकर बोलती और ना ही कभी ईश्वर को कोसती थी। परिवार के सभी लोग ऐशो आराम से घर में रहते, परंतु ललिता हर मौसम, चाहे वह पूस की मलमली हो, ठेहुन भर बरसात या फिर भीषण गर्मी या चिलचिलाती दोपहरी, भोर में उठती, चूल्हा चौकी घर आंगन लीप पोत कर, चकाचक कर, नहा धो पूजा पाठ कर सबके लिए खाना पकाती। ललिता में और सुंदर गुण था कि जब तक ईश्वर नहीं करती तब तक मुंह में अन्न का एक दाना तक नहीं डालती। सभी लोग खाना खा लेते, जो शेष बचता खुसता व संतोष के परिवार को नसीब होता। भोर भिन्न समय उठकर कांधे पर दाल लादे संतोष निर्जल बिना कुछ खाए भूख से तड़प चला घर को लौटता है, तब अपनी पत्नी ललिता को आवाज देता है, किधर हो ललिता, सुन रही हो? ललिता, अगर रसोई के चूल्हा चौका पर कुछ बचा कुचा हो तो ले आओ, जोर की भूख लगी है। ललिता अपने पति के थकान भरे स्वर को सुनते ही मन कचोटती हुई हाँ में भरती है, जी अभी लाई। थाली में सिराए मांड भात परोसती है और अंदर ही अंदर फफक फफक कर रोने का प्रयास करती है, परंतु दर्द हलकान करने वाले आंसू कोरे सुघड़ नैनों में सूख जाते हैं। ललिता खाना परोसती हुई, लीजिए स्वामी, बहुत दिनों से घर में राशन पानी नहीं है, सबको पता भी है, परंतु मास्टर साहब यानी बड़का भैया चाहे मंजला भैया के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा, अगर मैं ना पकाऊं तो घर में अलग ही बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बस एक आपका मुख दिख जाता है कि आप खेत पर से लौटेंगे तो क्या खाएंगे, लीजिए स्वामी खाइए। संतोष ललिता के चिंता को दूर करते हुए ध्यान भटकाते हुए कहता है, अरे वाह ललिता, नए का चावर का भात पकाई हो? ललिता तपाक से उत्तर देती है, जी हाँ, आप ताल वाले खेत में जो धान बोए थे उसी धान का नयका चावल और डीह में जो आलू बोए थे उसका चोखा। रात दिन खेत खलिहार और अन्य अन्य कार्य कर लौटा थका हरा संतोष अन्न का पहला निवाला जैसे ही मुंह में डालता है वैसे ही उसको अपना बेटा बेटी याद आते और फिर ललिता से पूछता है, ललिता बच्चों को खाना खिला तुमने नहीं खाई? ललिता के मुखमंडल पर अशांति की रेखाएं, शारीरिक और आंतरिक क्लांति को भांप संतोष ने कोमल भरे स्वर में कहता है, ललिता तुम्हारे उद्विग्न और उद्वेलित भाव से सब कुछ बयां हो रहा है, देख पगली, ये जीवन रूपी चक्र है, यहाँ उतार चढ़ाव, आशा निराशा, सफलता असफलता, सबको स्वीकार ही करना पड़ता है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे समय व मोड़ आते रहते हैं जो हमें अवसाद और विषाद की खाई में पटक ही देते हैं, ऐसे में मन अशांत रहता है, हमारे आसपास के लोग एवं सभी भौतिक चीजें तुम्हें परेशान कर हमारे सभी सुख छैन छीन ही लेते हैं, परंतु ऐसी मुश्किल हालातों में कारुणिक परिस्थितियों में हमें हमारे मन आत्मा को मजबूत और सबल प्रदान करने और बनाने की जरूरत है। ललिता तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है ना? बस उन पर ही भरोसा रखो, आज हमारा वक्त और समय भले ही अनुकूल न हो परंतु ललिता सब दिन होत न एक समान, इसलिए तुम सत्य से मुंह मत मोड़ो और व्यक्त की सोच और पचड़े में पर अपना समय मत गवाओ। कहते समझाते थके हारे संतोष को स्वाभाविक उंगाई आने लगती है और फिर वह अपने हिस्से के मिले छान छप्पर की कोठरी में गुदड़ी ओढ़ कर सो जाता है। ललिता बचे खुचे अन्न को लेकर खाने बैठती है और बच्चों को अन्न के कुछ एक दाने जैसे ही मुंह में डालती है तैसे ही उसकी बड़की ननद सुनीला, जो स्वभाव की बिल्कुल झगड़ी लड़ने वाली, कटु कर्कश आवाज, ईर्ष्या द्वेष तो कुट कुट कर भरा हुआ, देवड़ी से उद्वेग भरे स्वर में आवाज लगाती है, ललिता, अरे ओ ललिता कहाँ मर गई? देखो छुट्टी पर बड़का भैया आए हैं, पैर प्रक्षालन के लिए गर्म पानी कर ले आओ और संतोष को बोलो जाकर दुकान से जलपान के लिए कुछ मर मिठाई का इंतजाम करे। संतोष की आंखों में नींद दस्तक ही दी थी कि अजी सुनते हैं, बड़का भैया जी आए हैं, जाइए जलपान आदि की व्यवस्था कीजिए। ललिता उधर से चूल्हा चौकी पर कठौती में पानी गर्म कर लाती है और जरा सी देर क्या हो जाती है, सुनीला उसे हजार अपशब्द खरी खोटी गालियां और बुरा भला कहती है। एक तो इतने दिनों के बाद घर आए हैं, पर न जाने यह औरत किस अंतःपुर में लीन रहती है, काम के नकाज के दुश्मन अनाज के थाली खाकर बस सो ही रहती है। देख ललिता ऐसा रहा तो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, सुनीला के तीखे शब्द बाण के प्रहार ने ललिता के कोमल हृदय को छलनी छलनी कर दिया, बेचारी को मानो काट मार दिया। वह चुपचाप भीत की भांति खड़ी खड़ी सारी जली कटी बातें सुन रही थी, संवेदनशील हृदय होने के कारण वह भाव विह्वल हो गई। उसकी आंखों में निश्चल आंसू ढुलकने ही वाले थे कि उसके बच्चों की रोने की आवाज आई। संतोष भी एक कोने में खड़े होकर भाभी की खरी खोटी चुपचाप सुन रहा था। ललिता डर के मारे टस से मस और मुंह से उफ तक न की। संतोष मन ही मन यह सोच रहा था कि दुखियारी बेचारी ललिता मेरी गैर मौजूदगी में कितनी कष्ट सहती होगी। संतोष मन ही मन बुजुर्गों की एक कहावत बुदबुदाता है, लोग ठीक ही कहते हैं कि सीधे की मुंह कुत्ता चाटता है। सीधे लोगों को ही दुनिया बुरा भला कहती और ठगती। संतोष ने ललिता से कहा, ललिता जाओ बच्चों को देखो, वो कब से बिलख रहे हैं। ललिता झट वहां से चली जाती। ऐसे ही घर परिवार आस पड़ोस को सुनते सहते, हालातों को पुचकारते, समय के थपेड़ों को सहते रहते, हालात की आंच पर पक वक्त की कसौटी को परखते संतोष और ललिता को कई वर्ष बीत गए। संतोष के दोनों बड़े भाई भी अर्धशिक्षित मूर्ख जाहिलन क्रूर की भांति तमाशबीन बन पड़ जाते थे। संतोष के विषम परिस्थितियों में न तो कभी मददगार बने, न ही इन दोनों के असहाय दाम्पत्यों की व्यवस्था और लाचारी समझी। यहाँ तक कि जब दोनों भाइयों का सारा काम काज का निपटारा, सभी लड़के लड़कियों की शादी ब्याह संपन्न हो गया, तब अंततः संतोष और ललिता को उनके भौतिक सुख सुविधाओं को छीन भिन कर मारपीट अलग कर दिया। ऐसे स्थिति में दोनों जाए तो जाए कहाँ, एक ही काल कोठरी सम घर में बारहो मास आठो पहर जैसे तैसे भूखे प्यासे गुजारा करते रहे, दो जून की रोटी के लिए इधर उधर हाथ फैलाते फिरते रहे। जिस वक्त दाम्पत्य जीवन सुख भोगना चाहिए, उस वक्त उन दोनों का नव यौवन सौंदर्य तो टहल टिकोरा आभा भगत सेवा शुश्रूषा में नौकर चौकर जीव व्यतीत हो जाता है। फिर भी संतोष और ललिता ने अपना मनोबल अंतर्विश्वास हौसला दृढ़ संकल्प एवं परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति स्वयं को कभी थकने हारने विचलित होने व मरने न दिया। परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल होती गई, परंतु हालात की आंधी से मन रूपी मोमबत्ती को हौसले और उत्साह से बुझने न दिया। संतोष और ललिता ने हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर सदैव जीवंत रखे। जिंदगी उनके साथ हजार दांव पेच क्यों न खेलती रही हो, पर एक कहावत है ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जब भी भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। वह सुबह कभी तो आएगी कि उम्मीद उन दोनों के जीवन में नौ सवेरा लेकर आता है। संतोष के द्वारा लिया टीचर ट्रेनिंग प्रशिक्षण और सरकारी नौकरी की वैकेंसी खबर सुनकर संतोष का जीवन रुपया बगिया खिलखिला उठा। वैकेंसी विज्ञापन जैसे ही आई, संतोष ने फॉर्म अप्लाई किया। संतोष का अथक प्रयास और ललिता का भगवान व अपने पति के प्रति अटूट भक्ति आस्था विश्वास नित्य निरंतर पूजा पाठ का प्रतिफल क्या खूब रंग लाया। संतोष जिला के ही एक विद्यालय में शिक्षक का पद ग्रहण कर सुशोभित करता है। ललिता के चेहरे पर खुशी का ठिकाना न रहता है। ललिता कभी हंसती और कभी रोती है। इस ललिता की आंखों में खुशी के असली आंसू के मोती झर रहे थे। ललिता के लिए उसके जीवन का यह ऐसा क्षण व पल रूपी मरहम था जो उसके संपूर्ण जीवन के चोट घाव पर मरहम लगाने का काम कर रहा था।
1: श्रोताओं, अभी आप सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी से सुन रहे थे बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, सब दिन होत न एक समान। इसका अर्थ ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वास्तव में श्रोताओं, समय हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए तो कहते हैं, आज अगर आंखों में पानी है कल होठों पर मुस्कान होगी, आज अगर राह कठिन है तो कल मंजिल आसान होगी। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। वक्त बदलता रहता है, बदलते हैं हालात तमाम। इसलिए तो कहते हैं, सब दिन होत न एक समान। तो श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ आज के शब्द शिल्प की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं समाप्त होती है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.gmail.com। और अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प, ये आकाशवाणी का पटना।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन राग शंकरा में।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन सुना राग शंकरा में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखा है आप श्रोताओं ने। लालूचक भागलपुर से विष्णु कुमार चौधरी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अकरम, सोनम, दानिश, आसमा, महताब, आफ्ताब और मेराज अंसारी, गडिया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष, कुंदन, करीना, पूजा, आरती और सुनीता देवी, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, शुभचंद्र बजाज और बिट्टा बजाज, एकता रेडियो श्रोता संघ बड़ी खंजरपुर भागलपुर से भाई गुल फराज आलम, बेगम शमारा, जमालुद्दीन नेपाली, फायजा, फातमा, यूसुफ और हमजा, लालूचक भागलपुर से गायत्री देवी, आरती कुमारी, रेखा, पूनम, रीता, अंजलि और घर के सभी सदस्य। इन श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ये दो गाना, फिल्म है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे।

कहलगांव पूरब टोला वार्ड नंबर 15 से सुजीत राय, दीपांकर राय और परिवार के सदस्य सदरुद्दीन चक से मोहम्मद सजाद हाशिम और मोहम्मद हाशिमुद्दीन और इनके तमाम परिवारजन, गोपाल प्रसाद शाह और परिवार के सदस्य बूढ़ानाथ रोड भागलपुर से, धोरैया गंगदोरी से सांदेव हरी, कवित्री देवी, तनुजा कुमारी, अन्नू आंचल और परिवार के सदस्य, अनिरुद्ध चौक, चुन्नी मध्य

जयपुर से भाई प्रेमचंद ठाकुर, मीना ठाकुर, मुरारी ऋषि, संजू, सुभाष, भवानी, लवकुश, अरुण झा और राजू खान। सकरुला चक कवाली मैदान से बीबी ताहिरा बेगम, नासिरा, टुन्नी, गुड़िया, नाहिदा, सितारा, निम्मी, आयशा और तौसीफा। और ये श्रोताएं सुल्तानगंज सीतारामपुर से प्रमोद पासवान, सुष्मिता, सागर, दीपा, करीना और सूरज। इन श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म प्रतिज्ञा में।

आकाशवाणी भागलपुर से अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे हैं, पसंद आपकी। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, फिल्म है साजन बिना सुहागन और गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप श्रोता। नज़ीर मोमिन लेन इस्लामपुर चंपानगर से, शबीर अहमद, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर और तारिक अनवर, शुभानपुर कटोरिया बांका से शादत अली, सालिक सादत, सिद्रा सादत और शाहिना परवीन, भट्टा रोड विशहरी स्थान भागलपुर से योगेंद्र राय, विभा राय, विप्लव, वैभव, यामिनी और यशा, ग्राम जिकुलिया बांका से रमेश साह और परिवार के सदस्य, मधेपुरा से संगम कुमारी, ऋषभ राज, पटेल नगर पंजाब से डॉक्टर राजेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू, आज़ाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, अमरपुर

से दीपक कुमार, रोशन बंसीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा, लवि, अनिल, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश और समस्त बत्ता परिवार। तो आइए इन श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म साजन बिना सुहागन में।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेश नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, हकीम शाह मोहम्मदलेन रहमानी चौक भागलपुर से हुजैफा दाऊ, दाऊद अंसारी, खालिद अंसारी, जाहिद अनवर, तारिक अनवर, मंदरोजा चौक भागलपुर से कुमारी स्नेहा, रूपेश, लोकेश, राकेश और निकेश, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जितैक विरक और मिका विरक, अली बख्श लेन मोहल्ला नाथ नगर से दानियाल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फजैल और जुबैर अंसारी, ततारपुर भागलपुर से अरशान अहमद, जारिश अहमद, सन्नी, हमदान अहमद खान, सुमरन शानिया, शफक शानिया, नुसरत शाजली, सुमी परवीन और शगुप्ता साहिन, राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता, रुद्र, रिद्धि, मुकेश, कुसुम, पलक, पंखुड़ी, मंजीत, सोनाली, सूर्यांश, मेनका, साध्वी, तन्मय और गुनगुन। इन श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म प्रेम पुजारी में।

नीलकोठी मोहल्ला साहबगंज भागलपुर से छोटू सृष्टि, मोहित राज सोनम और डॉक्टर सुभद्र कुमार मंडल, गोराडी से डॉक्टर हेमंत कुमार, जीवेश नंदन और नीलेश नंदन, सुदामा नगर रटलाई झालवाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी, सत्यनारायण मनोहर भाई और प्रभुलाल बागड़ी, मस्कन चंपानगर से अशोक कुमार, शेखर सुनील गणेश, उर्मिला देवी और समस्त परिवारजन, अकबरनगर से अशोक कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, सोमू रिशु और अंशु कुमार, भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से राम गोपाल विश्वकर्मा, उमेश हिमायु और योगिता विश्वकर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका विरक, बलविंदर विरक, जितैग और हरदेव मीका, मंदरोजा चौक भागलपुर से कैलाश रजक, अनिल रजक, सुनील और हरी रजक, भगवान महावीर पथ भागलपुर से ज्योति सिंह जैन, राज सिंह जैन, स्नेहा जैन और प्रवीण सिंह जैन, मोहल्ला काजीपुरा कहलगांव से सुहाना, यश, अरमान, खुशी, सिमरन, मुस्कान और बेबी मायरा, गंगा विहार रानी तालाब से नंदकिशोर मंडल, मीरा देवी, नीलम, मनोज, अमित, बबली, स्वीटी, सुरुचि, रोली, पायल, अनवी, आशी और ईशु बाबू, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। इन श्रोताओं की फरमाइश पर कार्यक्रम के आखिर में आइए अब आपको सुनवाते हैं शिकार फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

शिकार फिल्म के इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।